एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच आज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होईयां,

जदों चमकौर दी गड़ी छड़ के आए रात दे हनेरे विच तुरदे तुरदे पातशाह माछीवाड़े दे जंगल विच पहुंचे। जामा लीरो लीर है पैरां विच जोड़ा नहीं वो भी किधरे

सिंघा नु तैयार कर करके भेज दे रहे। इस तो पहली रात वो भी घमासान युद्ध दे विच ही बतीत हुई। आनंदपुर दे विच भी साहब जी नु कोई किसी प्रकार का आराम नहीं मिलिया। किन्ने ही दिन तो बेआरामी और उनिंद्री की अवस्था माछीवाड़े की जंगल विच पहुंचे ने आराम करन दे वास्ते। आप टीम का सराहना लेके भुंजे ही लेट गए ने। मखमला ते सौन वाला अज धरती का विछाउणा करके टीम का सराहना लिया होया है। विश्राम अवस्था विच लेटे हुए ने गुरु कलगीधर पातशाह। राही एक तुरिया आउंदा वेखिया दूरों इसने नजर भर के कौन है इस बयाबान जंगल दे विच टीम का सराहना लिया होया बेपरवाही दी नींदर सुत्ता होया कौन है। नाल ही अंतर ख्याल उत्पन्न होया इस तरह जापदा है कोई नूरानी जोत इस जंगल दे विच आके विराजमान हुई है। इंज जापदा है कोई बेपरवाह कोई बादशाह दा बादशाह इस जंगल दे विच भाग लाने वास्ते आया है। इन्हां चंद लाइनां दे विच कवि ने अपने

उस मंद मंद चलती हुई पवन नू हवा नू संबोधन करके कहता है, ऐ माछीवाड़े दी हवाए अज तेरे भाग जाग पए ने, ऐ माछीवाड़े दी धरती तेरी किस्मत जाग पई है, दो जहान दा वाली तेरी गोद दे विच विश्राम करन वास्ते कुछ चिर लई लेटिया है, सेवा कर ले रज रज के सेवा कर ले, आहिस्ता आहिस्ता चल मता पत्या दे खड़ाक नाल किधरे इसकी अख ना खुल जाए, पता नहीं किन्ने चिर दा उनिंद्रा है, याद रख तू सेवा पई कर दी है इसकी, दुनिया तेरे इस पवित्र स्थान ते आके मत्थे चुकाया करेगी नमस्कार करेगी, क्योंकि इस धरती नू अज मेरे गुरुदेव कलगीधर पातशाह जी ने अपनी चरण छो बख्शिश करके इस दे भाग जगा दिते हैं, सेवा दा अवसर मिलिया है, कर ले सेवा। अखीरलियां पंक्तियां विच हवा नू संबोधन करके कहिंदा कवि

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

इस भजन में यह वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
4: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

0: What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.
1: जुम्मन मियाँ, वो महफिल ही कैसी जहाँ दिल वालों के साथ साथ दिल जले ना हो. तुम दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे.

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, the been beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for Realizing the True Self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights, and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM। द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

Welcome back out for the classic flashback. Williams and Rise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big big big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: ऑफिशियल मीडिया पार्टनर सनराइज रेडियो।
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार व्हिच इज आफ्टर द न्यूज, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

वेलकम बैक आफ्टर दिस अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग विलियम सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, एंड देन दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड, डाउनलोड द ऐप। एंड ऑन दैट नोट, द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

Welcome back after the classic flashback. Only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था. But unfortunately, it's time to go. मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर. Till then, take care of yourself, your family, your loved ones. Be productive, be creative, and take care.

के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 100.6 एफएम और 100.32 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है और इसके अलावा डेब पे आप हमें ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अकरिंगटन मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में सुन सकते हैं इसके अलावा आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर भी सुन सकते हैं और अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं संदा रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर आप बआसानी सुन सकते हैं आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सात सरी अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं

0: तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक रहेगा। आपसे लेकर 12 बजे तक आपकी डेडिकेशन है। फिर 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: To the hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। आप दोस्तों ने हिट ऑफ द आवर का ये गीत जरूर पसंद किया होगा। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप भी और जो है हम भी घड़ियां जो हैं वो चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया। और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। महबूब अलाई साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके नाम करेंगे। और आपके साथ साथ चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब। आप की जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम गीत होगा। और आपके साथ साथ इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। 24 hours a day,
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दस 7230300।
4: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इस गीत के दौरान हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो है जनाब नदीम मंसूर साहब, उनका भी फोन आया। नदीम मंसूर साहब, आपने जिस गीत की फरमाइश की जनाब, क्वार्टर टू पे जाके जब पुराने गीत की बारी आएगी तो आपका गीत ज़रूर प्ले करूँगा, क्योंकि हमें अयूब चौहान साहब ने भी फ़ोन कर रखा है और उन्होंने भी रफ़ी साहब का गीत सुनना चाहा, तो उनका गाना, अयूब चौहान साहब का गाना अभी लगा देंगे, जो अपने दोस्तों के लिए वो सुनना चाहते हैं वो अभी लगा देते हैं रफ़ी साहब का। और नदीम मंसूर साहब, आपका जो गाना है वो पौने पे ज़रूर लगा देंगे। शुक्रिया फ़ोन करने का नदीम मंसूर साहब। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, अयूब चौहान साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम करेंगे। आपकी पसंद का गीत अभी आपको सुनाते हैं। और उसके बाद खान भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और उसके बाद मोहम्मद बशारत भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, प्रोग्राम को पसंद करने का, आपके नाम भी करेंगे। उसके बाद तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया आपका एक बार फिर फ़ोन करने का जनाब, आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, हीरा साह खान के लिए और साथ में मलिक इश्तियाक साहब के लिए, उनके नाम भी करेंगे। और चौधरी मुजफ्फर साहब, आपके नाम भी करेंगे। महबूब इलाही साहब, आपके नाम भी करेंगे। तो बहुत प्यारा गीत है अब, और इसी गीत को आज जनाब पाकिस्तान मीरपुर में जनाब जो हैं तबस्सम शहजाद साहब, वो जो हैं वो आज अपनी सालगिरह बना रहे हैं। तो तबस्सम शहजाद साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थोड़ी देर के बाद आपके लिए कोई और गीत प्ले करते हैं, फ़िलहाल आप आसिम के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो जनाब चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत रफ़ी साहब का, जो हमें अयूब चौहान साहब ने फरमाइश की, तो उनकी नज़र।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना रफी साहब की प्यारी सी आवाज में। और अब जनाब खान भाई, आप फोन करते रहे, मैं दूसरी कॉल पे था इसलिए आपकी कॉल ले नहीं पाया हूँ जनाब। तो खान साहब, आपके नाम गीत भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब मानचेस्टर से आपने फोन किया, शुक्रिया आपका। आपके नाम भी गीत करते हैं। और तारिक जुल्फी साहब, माजत ख्वाह हूँ जनाब, आपने अपने दोस्तों के लिए हीरा खान और मलक अशफाक साहब के लिए गीत सुनना चाहा था और मेरे मुंह से जनाब निकल गया इश्तियाक साहब, माजरत चाहते हैं। मलक अशफाक साहब के लिए आपने गीत सुनना चाहा था तो आने वाला गीत था, एक बार फिर आप दोस्तों के नाम करता हूँ। और पाकिस्तान से, मीरपुर से जनाब इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इकबाल तबस्सम साहब, वो भी सुन रहे हैं, उनके नाम भी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी जानिब से ड्यूसबरी के तारिक भट्ट साहब हैं, उनके नाम चौधरी आसिफ रियासत साहब के नाम भी करते हैं। और इसी गीत को तबस्सम साहिबा आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977 201226. Mirdosh Kumar 07899 055525. Gurkirit 07886 545970. Usha 0793 1788 062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

प्यारा सा गीत है कुमार सानू और अलका यज्ञ की आवाजों में। दोस्तों बहुत ही प्यारा गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया। अब चलते हैं एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं और हमें फ़ोन किया ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब आपने, शुक्रिया फ़ोन करने का। माजे चाहता हूँ मैं दूसरी कॉल पे था, आपकी आपसे बात नहीं हो पाई। और उसके बाद हीरा खान साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का और आपसे भी बात नहीं हो पाई। और उसके बाद जनाब खान भाई आपसे हुई बात लेकिन ना होने के बराबर, क्यों दूसरी कॉल को होल्ड करके आपसे बात की। तो एनीवे बहुत अच्छा लगा आप दोस्तों से बात करके। तो चलते हैं जनाब मूना जी आपके नाम भी करते हैं और आप सभी दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 11:46, यानी कि 11:46। और खान भाई, आपने कहा कि कोई तेज सा गीत चलाइए, अब कैसे तेज गीत चलाऊं जनाब? जो गीत प्ले कर रहा हूं वो फरमाइशें लोग कर रहे हैं। अभी खान भाई फरमाइश की हमें नदीम मंसूर साहब ने, कमर्शल के बाद जो गीत होगा रफ़ी साहब का, उनकी फरमाइश पे आ रहा है, तो कोशिश करते हैं अगला जो उसके बाद गीत होगा कोई थोड़ा तेज गीत होगा। और जनाब उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब, आपने फिर फ़ोन किया और कहा कि आप रफ़ीक साहब का गाना, मैंने कहा प्ले करने जा रहा हूँ, तो आपने कहा मेरे नाम कीजिएगा। तो दोस्तों, अब जो गाना नदीम मंसूर साहब ने फरमाइश की थी उनकी नज़र करूँगा, उनकी पसंद का गीत उनकी फरमाइश पे। और उसके बाद इकबाल तबस्सम साहब पाकिस्तान मीरपुर से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। आपने तारिक अपने जनाब तारिक भाई ड्यूज़बरी वाले जो हैं उनके लिए आपने स्पेशली अब गीत सुनना चाहा, और साथ में ये कहा कि तारिक भाई को कहिएगा कि जनाब कोई ऐसी बात हो तो दोस्तों से नहीं छुपानी चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि जब आगे पीछे लोगों से पता चलता है तो दिल बहुत दुखता है फिर कि जनाब देखिए हमसे छुपाया गया, हम तो दोस्त थे, हम तो दुश्मनों में भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि दुश्मनों को बंदा उनसे जो है बात छुपाता है, कोई ऐसी बात हो तो आपने ऐसा काम किया यार, ऐसा ना किया करो, दोस्तों को बता देना चाहिए। पता नहीं पूछा मैंने क्या बात थी, वो गोल कर गए। एनीवे तारिक भाई, आप जो ड्यूज़बरी वाले हैं, आपके नाम ये गीत जनाब इकबाल तबस्सम साहब की तरफ से। और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपके नाम भी करेंगे इस गीत को। और उसके बाद जनाब हीरा खान, तारिक जुल्फी साहब और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।
2: Sunrise Radio, Sunrise.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
9: ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
8: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
9: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ, ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 pounds, ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 pound, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
8: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
9: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274488935।

0: क्या।
1: जी हाँ, रफी साहब की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत, तेरी आंखों के दुनिया में, तेरी आंखों के सेवा दुनिया में क्या रखा है। क्या गीत था, क्या शायरी थी। यकीनन आप सभी दोस्तों ने इस गीत को पसंद किया होगा। और नदीम मंसूर साहब, आपने जनाब इस गीत की फरमाइश की थी, शुक्रिया फ़ोन करने का और इतने प्यारे गीत की फरमाइश करने का। तो जनाब अब चलते हैं जनाब प्रोग्राम का, इस आवर का आखिरी गीत, डेडिकेशन का आखिरी गीत, क्योंकि जब हम खबरों के बाद लौटेंगे तो जनाब लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो जनाब कोई शायर उसमें डेडिकेशन नहीं होगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होंगी। तो जनाब अब खान साहब, आपने कहा कोई तेज़ सा गीत लगाइए, तो टाइम के लिहाज से क्योंकि हमें छोटा सा गीत चाहिए जो तकरीबन 4 मिनट्स का हो, तो वो ये गीत है, तो इन्जॉय कीजिएगा। और रीटा बेटिया बेटा लंदन में अपने माजे चाहते हैं, अमेरिका में आप सुन रही हैं, आपके नाम भी करते हैं।

0: मार जाते हैं दोस्तों. गाना ख़त्म हो गया और मुझे खबर भी नहीं हुई. फ़ोन पे लगा हुआ था और बटन बंद था, इसलिए मुझे पता नहीं चला. और चलते हैं जनाब, टाइम चेक करते हैं.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 13:12. तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब. कमर्शियल के बाद लाइव कॉल का सिलसिला होगा. इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब ओल्डम से अयूब चौहान साहब और ब्रेडफोर्ड से एम खान साहब. तो चलते हैं, कमर्शियल सुनते हैं. कमर्शियल के बाद इन दो हस्तियों को सुनेंगे, उसके बाद दीगर दोस्तों से भी मिलेंगे. तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल.
2: 24 hours a day. बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
4: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
5: Sunrise Radio, Sunrise.
0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है. और दोस्तों, अब जैसा कि मैंने कहा था, लाइव कॉल का सिलसिला है और लाइव कॉल्स में आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओल्डम से जनाब अयूब चौहान साहब. उनको ढेर सारी तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन ओ कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अयूब चौहान साहब.
6: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
6: मैं ठीक हूँ. पहले एम खान साहब को लीजिए, वो उस्ताद हैं हमारे. तो उस्तादों से पहले शिगर्द चले जाएं तो थोड़ी सी
0: बेअदबी हो जाती है. कोई बात नहीं, कोई बेअदबी नहीं होती. वो बाद में ही आए थे तो बाद में ही उनसे मिलेंगे. आप अपनी फिक्र करें, उनकी छोड़ें.
6: मैं क्या किस चीज की फिक्र करूं?
0: फिक्र ही कर रहे हैं ना अपने उस्ताद की कि वो होल्ड पे हैं.
6: फिक्र नहीं कर रहा, वो रिस्पेक्ट होती है ना.
0: चलिए फिर, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट ही कर लेते हैं. आपको होल्ड ही कर लेते हैं. फिर आप अगर बुरा महसूस करते हैं तो फिर मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा. मैं ऐसा नहीं होने, मैं होल्ड कर लेता हूँ, कर लेता हूँ. शोर है आप?
6: शोर हूँ, बिल्कुल शोर हूँ.
0: चलिए ठीक है फिर. अच्छा चलिए जनाब, तालियां बजा लेते हैं एक बार फिर जनाब एम खान साहब के लिए. क्योंकि आपने सुन लिया यू चौहान साहब ने कहा क्या कहा, लेकिन एम खान साहब ने नहीं सुना होगा. एम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
7: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू. अज़र मेरी तरफ से चौहान साहब जो बड़े ऊंचे और बड़े साजो इल्म है.
0: आपने सुन लिया? आपने सुन लिया?
7: सुना नहीं, लेकिन उनकी गुफ्तगू में सुनता रहा हूँ. जब तो ऐसे आदमी हैं यानी रोते को साथ देते हैं.
0: अब वो तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब मैंने आपका नाम लिया कि वो भी होल्ड पे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी. मैं तो फिर रगड़ा जाऊंगा दूसरे लफ्जों में, क्योंकि मेरे उस्ताद जो हैं वो होल्ड पे नहीं और मैं बात करूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है. आमिर भाई, आप ऐसा करें कि मेरे उस्ताद मोहतरम को पहले ले लें और बाद में मुझे लें. मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी.
7: ये उनका बड़ा फन है और उनको अल्लाह हमेशा इज्जत से नवाजे. बड़े बड़े जो अजीम लोग हुए ना
0: जी,
7: एक आदमी एक बड़ा बहुत बड़ा स्कॉलर था, जब उनका शागिर्द आया
0: अच्छा,
7: तो दौड़कर घोड़े पर वो सवार था शागिर्द घोड़े पर, कहने लगे मेरे हाथों पर पाँव मुबारक रखो। लोगों ने कहा हजरत जी ये क्या है? उन्हें क्या इसका मुकाम इतना है कि जमीन आसमान के दरमियान इस वक्त इसे मुकाबले कोई नहीं, तो मैं चाहना इस शागिर्द को मैं कोई नूर हासिल करी ना।
0: वाह जी क्या बात है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अयूब चौहान साहब भी बड़े पहुंचे हुए शागिर्द हैं आपके।
7: बहुत बहुत पहुंचे हुए, देख आपके साथ जब से बात करते हैं
0: जो मेरे साथ तो दिल लगी करते हैं ना, क्योंकि वो दिल की भड़ास कहीं और निकाल नहीं सकते, वो मेरे साथ ही फिर दिल की भड़ास निकालते हैं।
7: बस वो सब ये अल्लाह ने सबको इनको अता कर दिया।
0: सही है सही।
7: अल्लामा इकबाल का सलाम पेश करता हूँ
0: जी।
7: अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, तुझ पर बरसता है शबनम

0: में गिले वीरान मेरा, मेरी बर्बादी की है, मेरी बर्बादी की है छोटी सी एक तस्वीर तू, मेरी बर्बादी की है छोटी सी एक तस्वीर तू, ख्वाब मेरी जिंदगी की, ख्वाब मेरी जिंदगी थी जिसकी है ताबीर तू, ताबीर तू। आगे भैया साहब का मौजूदा जमाने के बारे में जो भैया साहब ने कलाम किया, सियासी समाजी दुनिया में क्या क्या हो रहा, वो क्या होने वाला है, आप इतिहास फरमान दे। बोखलो सगावतो जुल्म अदालत गफलत सूरत संभाले, जोश खरोश नदी दे बोते और टापू सैर जंगल दे, माफी चाहता हूँ, रुड़ना तरना और रुड़ना तरना उड़ना टहना, जिक्र थे हर गाल दे, आज दिया बेकसिया गनिया हालत देश विदेशों, देशियों देश अजायब इस विच क्या बुरे क्या गैसू, को काफा दे पत्ते निशानी गारा शहर उजाड़ा, कलर शोर बगीचे नाले मेवे ते फुलवाड़ा, सैर शिकार उत्ते बंद बंद कैदा नाले सुला लड़ाई, सोग व्या मोहम्मद बख्शा हर गल इस विच आई, आखिरी शेर रुस्तम बस्ती हाल शिकस्ती दहशत बाज दिलेरी, खौफ उम्मीद मोहम्मद बख्शा इस विच गनी गनेरी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब,
1: शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जो आप आए हमारे प्रोग्राम में रौनक बख्शी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब एम खान साहब, और जैसा कि मैंने कहा था हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम, माजी चाहते हैं अयूब चौहान साहब, और उसके साथ ही हमारे साथ नदीम मंसूर साहब भी जुड़े हुए हैं। तो जनाब अयूब चौहान साहब, एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम मुर्शिदाबाद भाई, ठीक है आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक ठाक हूँ, बड़ी खूबसूरत मियाँ साहब का कलाम सुनाते हैं ये।
1: जी जी।
2: तो मैं भी जब पाकिस्तान जाता हूँ दरबार पर जरूर जाता हूँ।
1: अच्छा जी, वहाँ कलाम पढ़ने या दुआ करने?
2: दुआ के लिए
1: आपने कहा ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, तो मैं भी जब जाता हूँ तो दरबार पर, तो मैंने सोचा आप सोच रहे होंगे मैं भी वहाँ जाकर कलाम पढ़ता हूँ।
2: मेरी इतनी तालीम नहीं है कि मैं उनका।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तालीम तो आपके पास बहुत है, लेकिन मैं वो सवाल आपने बात इस तरह की कि मैं ये समझा, तो मैं हमेशा गलत ही समझता हूँ, पता है ना आपको।
2: अच्छा वो बात ये थी कहने की कि मैं एक दफा चला गया तो वहां पर।
1: कहाँ चले गए? कहाँ चले गए
2: जी? दरबार पर।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो वहाँ पर मांगने वाले होते हैं ना, तो एक एक दफा वहाँ उन मांगने वाले से एक आदमी इंग्लैंड भी आया था, तो उनसे मेरी मुलाकात, तो मैं उसको ढूंढ रहा था वहाँ पर।
1: अच्छा,
2: तो वो मुझे मिला नहीं है। तो मैंने एक से पूछा, भाई वो जो आदमी इंग्लैंड गया था यूके में, वो कहाँ आज? वो कहने लगा वो तो वीकेंड पर ही आता है, जो उसको देना मुझे दे जाओ।
1: अच्छा ठीक है।
2: तो उस बात से मुझे असल कभी कभी कोई बात ऐसी है ना, कभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात होती थी, आपकी बात से भी बहुत मुझे हंसी आई।
1: क्यों?
2: तो अकेला बैठ के यहाँ पर
1: मैंने कौन सी ऐसी बात की जो आप हंसते रहे? और इतनी
2: बहुत तस्वीर की बात आपने की थी ना, तस्वीर की हाँ, तस्वीर आपकी, तस्वीर की बात हो रही थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, सही है अच्छा सही है। हाँ, अल्लाह का वास्ता है, आगे कुछ और ना कह देना यार, यहीं तक रहने दो।
2: नहीं कहूँगा मैं, नहीं कहूँगा।
1: पर्दे में रहने दो आयु चौहान साहब।
2: अच्छा, तो ये कभी कभी हंसी आ जाती है अकेले भी, तो कभी कभी घर में भी अकेला रात को टीवी देख रहा होता है ना कोई बात, तो आप बेगम पूछिए बड़े हंस रहे थे शाम को, मैंने कहा कुछ पास ही ऐसी हो रही थी।
1: अच्छा,
2: तो मैं शायरी सुना देता हूँ आपको
1: जी।
2: तो इस तरह के थामा जो उसने
1: और रटा करे ना पहले, पता ना मैं जाके रेडियो पर पढ़नी है तो रटा लगाया करे ना, फिर आके इधर मक्खियां मारना शुरू कर देते हैं।
2: थामा जो उसने आज तो मौसम निखर गया।
1: हाँ, क्या बात है, क्या बात।
2: आंखें रास्ता मेरे दिल में उतर गया।
1: कोई आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। अच्छा,
2: मैं उसके साथ साथ बड़ी देर तक रही।
1: अच्छा,
2: वो अजनबी तो रूह में खुशबू से भर गया।
1: ओए होए,
2: दिन रात में उसको सोचना मामूल है मेरा।
1: वाह वाह, क्या बात है चौधरी साहब।
2: वो ख्वाब ख्वाब नींद में ऐसे बिखर गया।
1: वाह वाह वाह,
2: मैं उसको सोच सोच के पत्थर की हो गई।
1: ओए होए होए,
2: जाने वो शख्स किस तरह जादू कर गया।
1: वाह वाह, क्या बात है।
2: बातें हजार सोच के मैं शायद चली, पर उसके सामने मेरा सारा उनर गया। ये कोई शायद लतीफ साहब आती तो ये शायरी थी जी।
1: जी जी,
2: तो अब लतीफों की तरफ मैं आता हूँ।
1: अच्छा,
2: तो इससे पहले चौधरी फरियाद साहब को, चौधरी मुजफ्फर साहब को, और भी जितने भी आप लिखते हैं उनको सबको हमारी तरह से मोहब्बत भरा सलाम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: खातून ने फकीर से पूछा, ये क्या भीख मांगने का नया अंदाजा है कि तुम एक कशगोल की बजाय दो कशगोल लिए हुए हो? फकीर बोला, बेगम साहिबा, बात दरअसल ये है कि मेरा साथी मकामी सिनेमे में फिल्म देखने गया हुआ है। हाँ। और अपना काम मेरे सुपुर्द कर गया है।
1: अच्छा,
2: तो एक और है, बल्कि एक नहीं दो न। अच्छा, उस्ताद अपने एक शिगिर्द से तुम एक दम उल्लू हो। शिगिर्द जरा मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूँ।
1: अच्छा,
2: आप मुझे उल्लू कहते हैं और मेरे डैडी मुझे गधा कहते हैं।
1: अच्छा,
2: ये पहला दोस्त जिस दिन मेरी बीवी वापस आई, मेरे घर में चोरी होगी।
1: ओए होए,
2: दूसरा दोस्त किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत एक अकेली नहीं आती। तो ठीक है जी, आपका गाना प्ले करने का शुक्रिया, और आपसे हंसी मजाक कर मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप तो
1: वो बीवी का आपने जोक सुनाया, तो पुराना खिस्सा पिटा एक जोक है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक शराबी को पुलिस ने रात को 3 बजे रोक लिया।
2: अच्छा,
1: तो पुलिस बोला इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो शराबी ने कहा, जनाब मैं शराब सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। तो पुलिस वाला बोला वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ये लेक्चर रात के इस वक्त कौन देगा? तो शराबी ने कहा मेरी बीवी। तो बीवी का नाम रखे, मुझे ये पुराना जोक याद आ गया। तो बहुत जी,
2: एक आपने पिछले हफ्ते भी सुनाया था, वो भी बड़ा खूबसूरत था।
1: अच्छा,
2: वैसे आप भी कोई कम नहीं है।
1: क्या मतलब कम नहीं हूँ?
2: लतीफे सुनाने में।
1: अच्छा, मैंने सोचा ये कहने लगे हैं कि आप भी किसी लतीफे से कम नहीं है।
2: नहीं नहीं, आप फिर वही बात आ गई, आपको हमेशा गलत
1: ही सोचते। मैं उल्टा ही सोचता हूँ यार, क्या करूँ।
2: मैं सीधी बात करता हूँ तो आप उल्टे चले जाते हैं।
1: पता नहीं, आप सीधी बात करते हैं, मुझे उल्टी लगती है।
2: अच्छा, तो पर आप उल्टा ना बैठा करें, सीधा होकर बैठा।
1: नहीं, मैं कुर्सी पे सीधा बैठा हूँ, बैठा सीधा हूँ, वहाँ कोई उल्टा नहीं है। वैसे बात कोई करता हूँ तो उल्टी हो जाती है।
2: चलो, अल्लाह आपको दाई दे। ठीक है, खुदा
1: मुझे दाई दे, आमीन। आपको ना दे, मुझे ही दे। ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब हमारे प्यारे दोस्त जनाब अयूब चौहान साहब के लिए। और इस वक्त हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, नदीम मंसूर साहब और साथ में सीमा जी। तो वक्त जो है वो मैं बता रहा है, कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो चलते हैं पहले सुनते हैं कमर्शियल, फिर इन दो हस्तियों से मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल।
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना संडा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, जनाब नदीम मंसूर साहब और सीमा जी। तो नदीम मंसूर साहब ने कहा कि सीमा जी को पहले ले लीजिएगा, क्योंकि वो काम पे हैं, तो मैं घर में ही हूँ, तो मैं बाद में आ सकता हूँ। तो सीमा जी को हम तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। सीमा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: अस्सलाम वालेकुम
1: जी, कैसी हैं जनाब?
6: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
1: एज यूजुअल काम पे?
6: हां जी, बस ब्रेक हुई थी, मैंने सोचा चले।
1: बहुत आपने,
6: थैंक यू नदीम मंसूर का, उन्होंने टाइम दिया।
1: थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सोचा।
6: जो भी आए थे, अच्छी महफिल जाए थी, दोनों आज मिल बैठे, दोनों
1: दोस्त। जी जी बिल्कुल,
6: वीडियो को आगे रखा हुआ है।
1: हाँ, हाँ, नहीं,
6: नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी, कोई शोहरों के ऊपर लेके आऊंगी जोक।
1: नहीं जरूर जरूर, मैं तो खुश हूंगा। हमारे भी कुछ होना चाहिए ना हमारे बारे में।
6: हाँ जी, थोड़ा जोक होना चाहिए, बीवियों को आगे रखते हैं आप।
1: नहीं नहीं हम नहीं ये दिखने
6: वाले
1: नहीं नहीं सीमा जी बात ये है कि लिखने वाले जो हैं वो लिखते हैं तो हम तो खाली पढ़ के सुनाते हैं
6: जी जी।
1: इस मेरे हमारा
6: लिखने वालों ने शोरों पे भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है जो ढूंढने जाए तो बहुत कुछ है।
1: चलिए हमारी निगाह उधर नहीं जाती सीमा जी,
6: क्लासेस चेंज करनी पड़ती।
1: हाँ हाँ हमारी निगाह उधर नहीं जाती तो हम कोशिश तो करते हैं लेकिन जाती नहीं
6: है लेकिन नहीं है ना
1: तो इसलिए आप ही सुना दिया करें।
6: नहीं मैं कोशिश करूंगी कोई ढूंढ के ना
1: जी जरूर जरूर जरूर जरूर आई विल बी वेरी प्लीज।
6: प्यारी सी गजल मेरी वन ऑफ फेवरेट गजल है सुलमान अलवी की अजनबी शहर की अजनबी
1: अजनबी लोग है क्या बात क्या बात।
6: एक तो मौसम भी ऐसा हुआ है
1: बिल्कुल
6: मैंने सोचा चले
1: जी
6: चले मैं स्टार्ट करती
1: जी जरूर।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह, शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका। आपने इतनी प्यारी गजल जो है वो सुनाई, इतने प्यारे खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारी माशाल्लाह आवाज।
0: आपका जो मौका देते हैं और आपके लिसनर भी माशाल्लाह वो भी
1: वाह क्या
0: अंडरस्टैंड करते हैं, तो थैंक यू एवरीवन।
1: बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और इतनी प्यारी गजल सुनाई, यकीनन मेरी तरह सभी ने खूब लुत्फ उठाया होगा। बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब सीमा जी के लिए, क्या गजल उन्होंने सुनाई, यकीनन आप सभी ने खूब इंजॉय की होगी। और अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ नदीम मंसूर साहब जुड़े हुए हैं, ढेर सारी तालियां उनके लिए। नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और साथ में ही सीमा जी के लिए जो है आपने लाइन छोड़ी, आप होल्ड पे रहे, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत ओहो, ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, अल्लाह करे लाइनें वहाँ मौजूद रहें। दो अस्थियाँ थी हमारे साथ, नदीम मंसूर साहब और भाई रुखसार अहमद साहब। नदीम मंसूर साहब दोबारा फ़ोन कीजिएगा, दे वॉज समथिंग रॉन्ग विद मेरे सिस्टम के साथ हो गया कुछ, और वो लाइनें डिस्कनेक्ट हो गई और दोबारा फिर सिस्टम में पेर हुआ। तो नदीम मंसूर साहब, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आप फ़ोन कीजिएगा और मैं आपकी और किसी की कॉल नहीं लूँगा। दो लोग थे हमारे साथ, नदीम मंसूर साहब और चौधरी रुखसार अहमद साहब। तो नदीम मंसूर साहब और एम खान साहब आए हैं वापस, तो मैं बात कर लेता हूँ। जी एम खान साहब,
2: बच्चे दो मेरे, एक बच्चा है क्या पढ़ना जाता है।
1: हाँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी लाइन जो है ना खराब हो गई थी, और मेरे साथ नदीम मंसूर साहब थे और वापस जुड़ गए, उनको चांस दूंगा क्योंकि वो काफी देर से होल्ड पे थे। नहीं, थोड़ी देर के बाद आप थोड़ी देर के बाद या आप होल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, होल्ड कर लें, होल्ड कर लें, आप होल्ड कर लें और मैं नदीम मंसूर साहब को वापस ले लूं। और भाई रुखसार अहमद साहब, आप भी फ़ोन कीजिएगा जनाब। तो ढेर सारी तालियों की गूंज में फिर जनाब नदीम मंसूर साहब को जनाब खुश आमदीद, वेलकम जी उन्हें कहेंगा। नदीम मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन।
3: वालेकुम
1: सलाम। असल में ये जब सिस्टम को पता नहीं क्या हुआ, वो क्रश हो गया और मैं डर गया कि आप वापस नहीं आए, लेकिन यह है कि दोबारा वो जुड़ गया, लेकिन आपकी लाइनें खा गया, वो भाई रुखसार की भी और आपकी भी।
3: चलें, कोई बात नहीं, कभी अभी हो जाता है
1: जी। आप बात नहीं करेंगे क्योंकि कमर्शियल आने वाली है, तो मैं हम आपसे सुन लेंगे पहले।
3: चलें ठीक है, मैं अपना ही लिखा हुआ मैं आपकी नजर कर।
1: वो हो अपना लिखा हुआ,
3: अपना ही लिखा हुआ,
1: सदके जाऊं एक बार फिर तालियां जनाब, आए सदके जाऊं अपना ही लिखा हुआ माया, अब खुद गाएंगे अपनी सुरीली आवाज में, सदके जाऊं, ढेर सारी तालियां एक बार फिर आपके लिए। जी सर सुनाइए जी।
4: कोटेत या माया, विकोटेत या माया, प्यार दा

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह नदीम भाई शुक्रिया, मेरा नहीं आपका। इतना प्यारा कलाम, इतना प्यारा भाई आपने लिखा और अपनी प्यारी सुरीली आवाज में सुनाया, लुत्फ आ गया, मजा आ गया जनाब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमें ना शर्मिंदा करें शुक्रिया कह के, तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अगले और में इंतजार करेंगे आपका, ढेर सारी तालियां जनाब, बहुत शुक्रिया नदीम मंसूर साहब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और दोस्तों तालियों की गूंज में इन्हें खुशामदीद के वेलकम करके तो फिर आप खुदा हाफिज कहेंगे, क्योंकि अब कमर्शियल का टाइम हो गया है और एम खान साहब कह रहे हैं कि उनके दो साहबजादे हैं वो कुछ सुनाना चाहते हैं, तो अब क्योंकि वक्त जो है वो हो चुका है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद आएंगे तो फिर उन्हें सुनेंगे। महबूब इलाही साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या लेकर आते हैं ये साथी।

0: जी दोस्तों अभी माजी चाहते हैं क्योंकि ये गाना नहीं सुना सकते हम क्योंकि पूरा नहीं सुना सकते हमारे साथ कुछ हस्तियां जुड़ी हुई हैं तो पहले चलते हैं जनाब यहां एम खान साहब जो हैं वो कुछ कह रहे हैं बच्चे सुनाना चाह रहे हैं जी एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बच्चा हम तुम्हें सुनासी दा थवां इसकी दूसरा अफसाय कर सकते
0: जी जी
2: ये सहर जो कभी फरदा है कभी है अमरोज नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा वो सहर जिससे डर जाता है शबस्ताने वजूद होती है बंदा मोमन की अजा से पैदा खुदी का सिवे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेर फसा ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो अपने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तला में है शर्म कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह
3: किया है
2: तूने
3: बताए
2: गुरूर का सौदा फरेबे सोलू जया सया ला इलाहा इल्लल्लाह ये माल दौलते दुनिया ये रिश्ता पेवंद बताने वहम समा ला इलाहा इल्लल्लाह
3: खुद
2: होई है जमा उतामो
3: मकां की जन
2: जन्नारी ना है जमा ना मकां ला इलाहा इल्लल्लाह जावे
3: दूर
2: होवे
3: दिलगिरी
2: सदा
3: बहार
2: दही इस
3: बागे
2: सदा
3: कदे
2: हजा
3: ना
2: आवे
0: माशाल्लाह माशाल्लाह एम खान साहब टाइम बड़ा नाजुक हो गया है तो माशाल्लाह बच्चा बहुत प्यारा माशाल्लाह अल्लाह इसको सलामत रखे और अभी कितनी उम्र है इसकी
3: नाइन
0: माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी शागिर्दी में रहकर ये तो आ गई अभी से आपसे ऊपर जा रहा है जनाब क्या बात है बहुत शुक्रिया क्या नाम है इसका
3: फराज
0: उस्मान माशाल्लाह नाम भी बहुत प्यारा और बहुत प्यारा काम और अच्छे उस्ताद के साथ जुड़ गए हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी अल्लाह हाफिज बेशक अगले आवर में आइएगा आप टाइम नाजुक है ना बहुत शुक्रिया सर अल्लाह हाफिज फिर सारी तालियां जनाब फराज उस्मान के लिए और अब तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहेंगे वेलकम कहेंगे जी अनु कहेंगे महबूब इलाही साहब का महबूब इलाही साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी सुनियो पहले कोई सुनाओ सानू क्योंकि खबरों का वेला आ गया जी तो इस वास्ते आराम नाल सुन लवां तुहाडे कोलों
4: जी जी तुसा क्या सी ना गीत
0: मेरे सुनियो मैं जल्दी कर रहा वा मैं क्या और गल्ला ना करो तुसी सुनाओ सानू
4: जी जी नाम कहना चाहेंगे चौधरी मुजफ्फर तारिक दुल्फी बाकी जिन्हें भी साथी ने साथ नाम
0: जी ठीक है मेरी जान
4: सदके मैं जावां उन्हां तो जिन्हां दियां बांकियां टोरा सदके मैं जावां उन्हां तो जिन्हां दियां बांकियां टोरा साडे नल गुस्से रहंदे ते दर्शन देंदे होरा साडे नल गुस्से रहंदे ते दर्शन देंदे होरा सदके मैं जावां उन्हां तो टुरदे टुरदे मुड़ मुड़ तकदे पैर जमीन ते तोल के रखदे ਟੁਰਦ ਟੁਰਦ ਮੁੜ ਮੁੜ ਟਕ ਟਕ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਕਰੀਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋੜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਕਰੀਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋੜਾਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਕੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।

0: कोई हथ कड़िया नी लांदा वाई इना सोने चोरा कोई हथ कड़िया नी लांदा वाई इना सोने चोरा साढ़े नल गुस्से रेंदे ते दर्शन देंदे होरा सदके मैं जावा इना तो जुल्फां दे जाल खरा खलारन नजरा नाल निशाने मारन हाय ओए जुल्फां दे जाल खलारन नजरा नाल निशाने मारन सानू इना जिहा नी लभना इना नू लख करोड़ा सानू इना जिहा नी लभना इना नू लख करोड़ा सदके मैं जावा उना तो जिना दिया बांकिया टोरा सदके मैं जावा उना तो जिना दिया बांकिया टोरा साढ़े नल गुस्से रेंदे ते दर्शन देंदे होरा साढ़े नल गुस्से रेंदे ते दर्शन देंदे होरा सदके मैं जावा उना तो जिना दिया बांकिया टोरा सदके मैं जावा उना तो।
1: क्या बात है मसूद राणे का गाना जनाब आपने सुनाया, आए दिल गार्डन गार्डन हो गया जनाब। ढेर सारी तालियां जनाब महबूब अल्लाही साहब आपके लिए। और मैं बड़ा जब आपने बताया आपने गाना गाने वाले हैं तो मेरे लिए मैं जल्दी में हो गया ना, मैंने कहा पहले गाना सुनो बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। बहुत अच्छा गाना, बहुत ही प्यारा गीत था ये। और क्या इस गीत के कहने लिखने वाले भी वो कुछ और थे, गाने वाले भी कुछ और थे, अब जनाब वो बात कहाँ। बहुत शुक्रिया मेरी जान, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये गीत, क्योंकि एक मिनट डेढ़ मिनट रह गया खबरों में, तो डेढ़ मिनट ये गीत आप सुन लें, क्योंकि हम कोई कॉल तो नहीं डेढ़ मिनट के लिए ले सकते।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना संडा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आ गए हैं दोस्तों उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और इस हिस्से में भी अगर वक्त मिला तो अच्छे गाने प्ले करने की कोशिश करूंगा वरना तो आपको पता है ये लाइव कॉल का सिलसिला होता है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं और इसके लिए आपके लिए लाइनें खुली हैं नंबर होगा 01274306666 जी हाँ 01274306666 तो जनाब चलेंगे अब हिट ऑफ द आवर की जानिब और हिट ऑफ द आवर के बाद जनाब लाइव कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब एक सुरीली प्यारी मीठी आवाज़ के मालिक तारुफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है जनाब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है खाली जब नाम लिया जाए नदीम मंसूर साहब का वो फिर पता होता है कि क्या हमने सुनना है इतनी सुरीली आवाज़ के मालिक हैं ये और हर बंदा ही इनका फैन है जनाब जो हमें बड़ा फख्र है तो जनाब जैसा कि मैंने कहा कि अब वक्त हो चुका है हिट ऑफ द आवर का हिट ऑफ द आवर का गीत मेरी जानिब से आप तमाम सुनने वालों के नाम और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं सुनते रहिएगा और याद रखिएगा अगर लाइव कॉल्स में आना है आपने शायरी करनी है या कोई गीत सुनाना है तो जनाब ज़रूर आइएगा आपके लिए लाइनें खुली हैं नंबर होगा 01274306666 तो चलते हैं सुनते हैं जनाब हिट ऑफ द आवर
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने सोनू निगम की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 1:12, यानी कि 12:01। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब, उन्हें सुनेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
3: 24 hours a day, Sunrise Radio.
4: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लाइव कॉल्स ली जा रही हैं जनाब, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब, एक बार फिर उनके लिए ढेर सारी तालियां। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई भी। तो जनाब,

0: नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। एक बार फिर कैसे हैं जनाब
1: जी? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम लगा। आप सुनाएं।
0: मैं ठीक हूँ जनाब। और जो आपने पिछले आवर में अपना ही लिखा हुआ माया सुनाया, वो अभी हमें हम माया हो चुके हैं अभी तक। और अब क्या लेकर आए आप?
1: अच्छा, अभी मोहम्मद रफी मरहूम साहब के गीत हैं।
0: वाह जी वाह, क्या आवाज।
1: आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको
0: सताओ। क्या बात है, बहुत खूब जी, सुनाइए।
1: तो ये कोशिश करता हूँ
0: जी। जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है नदीम मंसूर साहब, जब आप गाना शुरू करते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं हम, और जब गाना ख़त्म कर देते हैं दिल थोड़ा उदास हो जाता है कि यार इतना मज़ा आ रहा था ये गीत ख़त्म क्यों हो गया। तो एनीवे मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी आवाज़ दी है और ये आवाज़ हमेशा कायम दायम रहे और आप इसी तरह लोगों का दिल बहलाते रहें, अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया मेरी जान, अपना बहुत सा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे नदीम मंसूर साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए और ढेर सारी तालियों की गूंज में ही खुश आमदीद वेलकम जीएनयू जावेद मीर भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। जावेद मीर भाई कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। ठीक है मेरे भाई।
0: मैं अपने भाई की बड़े दिनों के बाद आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जब आप नहीं आते हैं तो हमें थोड़ा बदसकूनी सी हो जाती है और फिर दिल में वसवसे होते हैं, क्या बात है भाई क्यों नहीं आए। तो जब आप आते हैं तो हमारा शो मुकम्मल हो जाता है।
1: मेहरबानी आपकी, शुक्रिया
0: जी भाई जान।
1: मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और आपको बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम
0: जी भाई,
1: और आने वाले हैं
0: जी
1: आमिर शहजाद, जिनमें हम मेरे दोस्तों में आमिर शहजाद साहब हैं, गुल सफीना साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, तौकीर शाह हैं, तारक भट्ट, शकील साहब हैं, और आसिफ रियासत, अमजद हकीम भट्टी हैं, महबूब बिलाई हैं, कामरान शहजाद, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम, परवेज ताहिर मुगल, सफीउल्ला खालिद भट्टी, शरफद्दीन, तारिक जुल्फी हैं, छोटे पीर हैं, चौधरी महमूद है, चौधरी फरियाद है, और हमीदा साहिबा हैं, सादिया बहन है, गजाला साहिबा हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब, अतीका साहब हैं, और अमसर महमूद चमा मोरी हैं, चौधरी तारक हैं, और आजी अयूब हैं, शकील साहब हैं। वो आजकल वो नहीं आ रहे हैं, चौधरी फरियाद साहब।
0: चौधरी फरियाद साहब की तबीयत बड़ी ख़राब थी और पिछले प्रोग्राम में आए थे, आए थे पिछले प्रोग्राम में और कहा था कि यार तबीयत बहुत ख़राब है, आ तो नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए हिम्मत करके मैं आया हूँ। उनकी ये दिन जो है ना पता नहीं क्या है, दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान में है, बीवी यहाँ आई हुई है वापस, वो गई हुई थी तो बीमार हो गई तो वापस आ गई, तो हाँ तो दोनों बीमार हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनको शफा दे, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें।
1: अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए, जो जो बीमार हैं जहाँ जहाँ
0: जी,
1: अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला अपने
0: जी जी
1: तो तंदुरुस्ती वाली जिंदगी लंबी दे,
0: आमीन आमीन।
1: तो एक गाना है मेरे सनम फिल्म का है।
0: अच्छा अच्छा

कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे।

प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। हे प्यार मोहब्बत।

है, ओए प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लत इनकार की रुख पे डलती है, ये सच है।

सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे।

किए आंचल के साए, हाय तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने जोरी किए आंचल के साए। ये सच है।

0: हार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। ये मेरे भाई।
1: वाह जी वाह, क्या बात है जावेद मीर भाई, क्या बात है। रफी साहब का गाना बहुत प्यारा गाना, और बहुत अरसा हुआ ये सुने हुए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में नहीं है। और जो उसने गया था ना अपना मंसूर साहब ने भी, वो भी सिस्टम में नहीं था, वो ढूंढा अभी आपने गया तो ढूंढना शुरू किया तो नहीं मिला, नहीं है। तो एनीवे ऐसे भूले बिस्तरे गीत हैं जो हम, क्योंकि सिस्टम में नहीं, हम प्ले नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, और आप दोस्त आते हैं और फिर
0: आपके सिस्टम में होने चाहिए,
1: होने चाहिए थे। चलिए हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द हो जाएंगे। तो कोशिश तो कर रहे हैं ये सभी करने के लिए, तो हो जाएगा। तो एनीवे बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप आए हमारे प्रोग्राम को, रौनक बख्शी, इतना प्यारा गीत सुनाया कि क्या तारीफ करूं। गाना भी बहुत अच्छा था, आपने गाया भी बड़े अच्छे अंदाज में। अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: ज्यादा तारीफ ना करें।
1: नहीं नहीं, मैं जो आपका हक पहुंचता है ना, आप इतनी मेहनत करते हैं, लगन से आते हैं और फिर मजे के गीत सुनाते हैं हमें, तो हम दो चार लफ्ज भी आपके लिए ना कहें जनाब। और गाना फिर आसान तो नहीं है ना, आप कितना टाइम लगाते हैं उसको, उस पर रिहर्सल करते हैं और फिर आकर पता नहीं कितने घंटों की मेहनत के बाद आप हमारे
0: कई गानों की तो रिहर्सल होती ही नहीं है, कई गाने
1: सिंपल से होते हैं ना, सिंपल से होते हैं
0: वो, तो जब दो चार दफा पहले आपने सुनाए हो, ये भी आपको मैंने मेरे ख्याल है सुनाया हुआ है,
1: लेकिन बहुत अरसा हो गया है ना, वो तो भूल गए हम लोग।
0: वो कई गाने जो है वो बचपन से आप सुनते आए हैं, तो फिर
1: नहीं, वो तो सही है, लेकिन देखिए हर बंदा जो है उसकी अपनी मुख्तलिफ आवाज़ है, उसका अपना एक स्टाइल है, तो वो गाते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि जो ओरिजिनल गाने होते हैं वो होते हैं म्यूज़िक के साथ,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, वो प्रॉपर स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए होते हैं,
0: उसमें आवाज वगैरह भी जो
1: होती है, बिल्कुल उसको बड़ा मशीनरी होती है जो आवाज को बड़ा साफ करती है और उसको और निखारती है, और फिर साथ में मौसीकी होती है। तो आप लोग गाते हैं वैसे ही कमरे में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, गाते हैं, और फिर कोई म्यूजिक नहीं साथ में होता,
0: प्रोफेशनल तो नहीं है।
1: हाँ म्यूजिक, फिर भी आप लोग इतने मेहनत करके इतना अच्छा गाते हैं कि
0: होते हैं जो म्यूजिक पे गाते हैं,
1: जी जी जी,
0: रिहर्सल करते हैं,
1: सही है,
0: प्रोफेशनल लोग,
1: सही है सही। तो फिर भी इतना प्यारा लगता है कि मन नहीं भरता, बंदा कहता सुनते रहे तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी जान, आप आए प्रोग्राम को, रौनक बख्शी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे भाई जनाब जावेद मीर भाई, और ढेर सारी तालियां उनके लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनचेस्टर से जनाब भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब। और अब क्योंकि वक्त हो चुका है कमर्शियल का, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, यूं गए और यूं वापस आए।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं, और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-7350-43 पर कॉल करें।
4: Sunrise Radio, Sunrise.
1: जी दोस्तों साथियों अभी आप कमर्शियल ब्रेक सुन रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब मैनचेस्टर से भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब। तो जनाब तालियों की गूंज में चलते हैं भाई रुखसार अहमद की जानिब। भाई रुखसार साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم علی جناب عزت مآب صاحب صدر گرامی قدر ہر دل عزیز شخصیت اور میرے لیے نہایت قابل عزت قابل احترام اور بہت معظم میرے پیارے بھائی عامر شہزاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویری گڈ آفٹر نون
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ا ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو ایز ویل سر
5: थैंक यू वेरी मच। हजूर आप कैसे हैं, तबीयत आपकी कैसी है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं आप कैसे हैं?
5: जी माशाल्लाह आप जैसे माशाल्लाह इतने अनमोल लोगों की और माशाल्लाह इतनी महान हस्तियों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का खास करम है, मैं बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक हूँ।
1: अल्लाह हमेशा आपको फिट फाट और ठीक ठाक रखे सर, किसी का मोहताज ना करे। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं जनाब।
5: अल्लाह आमीन माशाल्लाह इतना प्यारा प्रोग्राम और इतना उम्दा और इतना मियारी माशाल्लाह अव्वल से लेकर और मेरे जैसे खाकसार और बंदा नाचीज तक जितनी माशाल्लाह हस्तियां जितनी शख्सियत आई थी माशाल्लाह, जैसे जावेद मीर साहब कह रहे थे ना कि रिहर्सल की जरूरत होती है, और माशाल्लाह इन जैसे लोगों की और मोहतरमा मुअज्जमा फैम जैसे और नदीम मंसूर साहब और महबूब लाई भाई जैसे ये शख्सियात जो होती है ना इनको रिहर्सल करने की जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा उन्हें, इन दोस्तों को रिहर्सल करने की जरूरत नहीं होती। काफी अरसे से ये शौक रखते हैं और सभी सुनते आ रहे हैं उनको, तो इतना सालों का तजर्बा भी तो कुछ चीज होती है ना
5: जी माशाल्लाह। और अल्लाह ताला देखे ना अमर भाई के अल्लाह ताला अगर किसी को अच्छी सुर देता है ना तो जरूरी नहीं कि उसकी आवाज भी इतनी अच्छी हो के हाले, और इतना बाइलम लोग हो तो जरूरी नहीं कि वो इतना अच्छा गा भी सकता हो, लेकिन ये जो जिन हस्तियों की मैंने बात करने का शर्फ हासिल किया ना इनमें अल्लाह ताला ने वो सारी खसूसियात जो है ना वो कहते हैं कि कूट कूट के भरी है। माशाल्लाह आवाज भी इतनी अच्छी है और इनका अंदाज भी, और माशाल्लाह जितना इनकी आवाज और अंदाज है और अल्लाह जाने ये आप कितने खूबसूरत होंगे।
1: बहुत प्यारे मिला हुआ मैं जावेद मीर भाई, बहुत प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह। और नदीम मंसूर साहब तो क्या तारीफ करूं यार, बहुत ही हैंडसम आदमी है माशाल्लाह। जी जी
5: जैसे मोहतरमा जावेद मीर साहब फरमा रहे थे ना कि इतनी तारीफें ना करो क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये तारीफें जो कहते हैं ना कि ये उनका हक बनता है, ये डिजर्व करते हैं।
1: बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो फिर हम आपकी तारीफ ना करें तो ये कोई फिर मुनासिब बात ना हुई ना।
5: जी फिर कहते हैं ना कि ये इनका हक होता है और ये इनका हक ना दे तो फिर हम भी कंजूस हो जाते हैं।
1: नहीं मैं कंजूसी नहीं करता, कोई अच्छा गाना गाए अच्छी शायरी करे नहीं, तो सर मैं दिल खोल कर जो है वो उनकी तारीफ करता हूँ, फिर कंजूसी नहीं करता हूँ। कंजूसी करना चाहूँ भी तो कंजूसी होती नहीं फिर।
5: नहीं मैं माशाल्लाह अल्लाह ताला को सलाम रखे, मैं तो अपनी अपने जैसे लोगों छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह
1: ये यार आप इतनी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और बड़ा मैं महसूस हो रहा होता हूँ, लेकिन बीच में आप ये जरूर इस तरह की कोई बात कर देते हैं जो मुझे हर्ट कर जाती है। ये कभी ना कहा करें, कभी भी ना कहा करें कि आप छोटे आदमी हैं या जो है वो कई बार आप कहते होते हैं कि नाचीज और फिर हम ऐसे बंदे हैं, तो इस तरह ना कहा करें। आप हमसे पूछें, आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह और आप सभी के लिए बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं और सब के लिए केयर करते हैं। आप जैसे आदमी के लिए छोटा तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए कोई सही लफाज होने चाहिए जो इस्तेमाल किए जाएं। आप छोटे ये लफ्ज इस्तेमाल करके आप मुझे हर्ट करने लगे हैं और सारा मेरा मजा खराब कर दिया आपने।
5: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये तो आपका प्यार और मोहब्बत है ना, यकीन करें
1: नहीं आप
5: उस्ताद शिगिर्द जितना भी काबल हो जाए ना या जितना भी अच्छा हो जाए या जितना भी तालीम याफ्ता हो जाए ना वो उस्तादों के मुकाबले में बच्चा ही रहता है।
1: वो तो ठीक है, वो तो ठीक है बच्चा ही रहता है, लेकिन कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो उस्ताद से भी ऊपरी ऊपर वाली सतह पर चले जाते हैं जनाब। उस्ताद भी मानते हैं फिर इस बात को कि ये मेरा जो शागिर्द है ये मैं इसके मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए आप दोस्तों की वजह से ही ये प्रोग्राम जो है ये इतना प्यारा होता है। आप देखिए 12 बजे जब शुरू की लाइव कॉल्स तो जितने भी लोग आए नाम क्या नूम है फर्दन फर्दन तो सिर्फ आप सब ने सुना और सभी आए और कमाल के आए। और जनाब एक प्रोग्राम जो लाइव कॉल्स में होता है उसके प्रेजेंटर में कोई इतनी खूबी नहीं होती, वो खूबी उन दोस्तों में होती है जो प्रोग्राम को फिर आप आकर अपने अंदाज में उसको सजाते हैं।
5: सर यकीन करें कि जैसे कहते हैं ना कि माली के बगैर जो है ना वो बाग बाग की रखवाली कोई नहीं करता। यकीन करें कि जब जो प्रेजेंटर होते हैं ना ये भी एक माली की हैसियत रखते हैं।
1: नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो है ना क्यों लाइव कॉल जो होती है ना, अगर मैं लाइव कॉल नहीं ले रहा हूँ ना फिर मुझ पर डिपेंड आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसा प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोग इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लाइव कॉल्स की बात आती है तो सर फिर वो हमारे हाथ से बात निकल जाती है, फिर वो हमारे बस में नहीं होती, फिर वो आप दोस्तों के बस की बात होती है।
5: अल्लाह ताला को सलाम। यकीन करें मैं जितना भी कह लूँ ना, जैसे कहते ना कि मियां मोहम्मद अकबर साहब ने क्या खूबसूरत कहा है कि सोने नाल ना पितल रलदा सुरने नाल ना कोले, कावां दी की कदर मोहम्मद जिथे बुलबुल बोले।
1: वाह वाह क्या बात क्या बात, सुभान
5: अल्लाह। जिथे एहो जी खूबसूरत और माशाल्लाह सुरीली हस्तियां मन उथे मेरे जैसे कावां दी की जरूरत की।
1: सर आपसे बातों में लग गए और कुछ सुना नहीं, बातें काफी हो गई और अब आपसे कुछ सुनते हैं क्योंकि जोहर की अजान का वक्त आ रहा है।
5: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, दो मीटर मेरे ख्याल रह गए हैं तो माफ़
1: जी जी
5: मैं आपका बहुत ही ज्यादा।
1: नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी ख्याल नहीं किया कोई फोन कर रहा है, कोई नहीं बस आपसे गपशप में लगा रहा ना अपने ख्याल में।
5: माजरत मैं मेरे पीछे जो हस्ती है मैं उसे भी माजरत चाहता हूँ।
1: कोई बात
5: तो मैं बस जल्दी जल्दी ना अगर जा सो तो मैं माँ की शान में कुछ सुना
1: दूँ। जरूर सुना दें, जल्दी करें क्योंकि जी।
5: शेर लिखता है बहुत बिगड़े हैं अब सुधर जाने को जी चाहता है।
1: क्या बात,
5: बचपन में जहाँ खेलते थे उधर जाने को जी चाहता है।
1: वाह वाह,
5: अब बहुत घूम लिए इन बड़े शहरों में मुसाफिर बनकर।
1: वाह,
5: माँ की याद आ रही है अब तो घर जाने को जी चाहता है।
1: वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
5: तेरे हाथों की वो गर्मी कहाँ से लाऊं माँ, तेरी दुआओं जैसी छांव कहाँ से लाऊं माँ।
1: वाह बहुत खूब,
5: दुनिया की हर नेमत मिल जाए अगर फिर भी तेरे जैसा सुकून कहाँ से लाऊं माँ।
1: वाह वाह सुभान अल्लाह,
5: मेरी खामोशी का राज कोई क्या जाने।
1: वाह,
5: मेरे दिल का ये अंदाज कोई क्या जाने।
1: बहुत खूब,
5: मैं हंसता हूँ तो लोग समझते खुश हूँ।
1: वाह,
5: माँ की जुदाई का दर्द कोई क्या जाने।
1: वाह क्या बात है क्या कहने,
5: तेरी कब्र की मिट्टी को छू कर रोता हूँ, अपने मुकद्दर पर अक्सर रोता हूँ।
1: वाह क्या बात,
5: आखिरी शेर सुना।
1: जी जी,
5: तूने मांगा था मेरे लिए उम्र भर सुकून, मैं तेरे लिए आज भी दुआएं करता हूँ।
1: वाह वाह क्या बात,
5: बहुत शुक्रिया अमर भाई,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद आपसे बात जारी रखूं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दोस्तों ये थे अमानचस्तर से भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब, ढेर सारी तालियों उनके लिए और अब ये सिलसिला यहाँ और रोक लेते हैं क्योंकि जनाब वक्त हो चुका है अपना जोहर की अजान का, तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, अब भी आपने जोहर की अजान सुनी और अब जनाब चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:45, यानी कि 1:45 और कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। और कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे जो मेरी जानब से आप तमाम सुनने वालों के नाम होगा, जो भी इस वक्त सन्ना रेडियो की निशियात को सुन रहे हैं उन सब के नाम होगा। और मेरा और आपका साथ जो है वो थोड़ा सा बचता है, अब इतना नहीं, थोड़ा टाइम रह गया है और उसके बाद जनाब आज खूब अल्ला गुल्ला होगा जनाब, क्योंकि काशिफ भाई आएंगे प्रोग्राम करने। और काशिफ का प्रोग्राम पता है ना आपको, फिर वो जो है वो एक मिनट के भी लिए वो बंदे को अकेले नहीं छोड़ता और अपनी कोई सोच बंदा सोच नहीं सकता, वो अपनी बातों में ही उलझाए रखता है और क्या मज़े का प्रोग्राम करता है, धमाधम मस्त कलंदर प्रोग्राम होता है जनाब। तो ज़रूर काशिफ का प्रोग्राम सुनिए, और अगर आप वो टेंशन में इस वक्त तो काशिफ का प्रोग्राम सुनेंगे तो यकीनन आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, टेंशन से ही आप दूर हो जाएंगे। तो जनाब जरूर सुनिएगा उनका प्रोग्राम। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो मेरी जानब से आप तमाम दोस्तों के नाम होगा जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: ऋषि's vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना एसपी बल्ला सुब्रमण्यम की सुपर डुपर आवाज में। और जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि अब मेरे प्रेम का जो वक्त है ये इख्तिताम पजीर होना ही वाला है। और मेरे बाद जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे सुपरस्टार जनाब काशिफ जो हैं वो प्रोग्राम करने आएंगे। और काशिफ का प्रोग्राम जो होता है आप सबको पता है कि वो लाइवली प्रोग्राम होता है, उसमें हंसी मजाक और बड़ी लाइवली बातें होती हैं काशिफ की और बड़े लाइवली गीत होते हैं। तो मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ उनका प्रोग्राम जो है, और मुझे उम्मीद है कि सभी दोस्त जो हैं उनका प्रोग्राम बहुत जो है वो इन्जॉय करते होंगे। और कुछ दोस्त ये भी कहते सुना है कि जनाब हमें बहुत जब टेंशन होती है तो काशिफ का प्रोग्राम हो तो फौरन हम ट्यून करते हैं और उसका प्रोग्राम सुनते हैं और हमारा जो हमारी जो टेंशन होती है उधर जहन ही नहीं जाता, फिर बस जहन जो है वो टक जाता है काशिफ की बातों में। तो इसलिए दोस्तों आप जो हैं आप भी अगर सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम को, काशिफ का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात जो है वो कल सुबह हो गई। काशिफ साहब आ गए, अब मुझे ये भी नहीं याद रहेगा खुदा हाफिज कैसे कहूँ, तो जैन तुम्हारी तरफ चला गया यार। चलिए
1: ये
0: ठीक है दोस्तों, हमारी जन से खुदा हाफिज, अल्लाह निकबान एंड गुड बाय।

92 गैरों के आसपास मौजूद हैं आप या बैठे हैं हमारी तरह अपनों के दरमियान में

कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ, हमेशा की तरह हाजिर खिदमत आपके आपके लिए। जी जनाब, दाएं बाएं ना देखे, आपको कह रहा हूं, हाजिर है यहां पे आपके लिए। और

जी जनाब 01274306666। जी अगर साथ निभाने वालों में से हैं तो 01274306666 यह आपका और हमारा राबता नंबर। गपशप होगी, बातें होंगी, मुस्कुराहटें होंगी। जनाब पिछले हफ्ते नागा किया, नागा आपको मतलब नहीं पता नागे का, गूगल कर लिया करें। जनाब गैर हाजिरी थी हमारी और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आज इतना काम को चुक के रखें कि जो गैर हाजिरी थी ना हमारी उसकी वो कमी पूरी हो जाए, उसका अजाला हो जाए, जुर्माना अदा हो जाए, तो जनाब एंटरटेन होने के लिए तैयार हो जाएं। आर यू रेडी? ठीक है जी, हम भी रेडी हैं, आप भी रेडी हैं, मगर इस सारे फसाद को जनाब पटारे से बाहर निकालने से पहले जमाने में अमन है और हम थोड़ी सी आग लगाने से पहले और जहां पहले से आग लगी है उसको मजीद भड़काने के लिए आप जूमें या ना जूमें आपके दिल को जनाब जरूर जूमना पड़ेगा हमारी आवाज और हमारे गीतों के साथ साथ। सबसे पहले जिनको देख के हम झूमते हैं, जिनकी बातें सुन के हम झूमते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका शुक्रिया यानी आमिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे पहले यहाँ पे आपने क्या जबरदस्त सा साथ दिया हमारे आमिर भाई का, और उन्होंने जो साथ दिया आपका उसके लिए जनाब उनका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब बारी है हमारी, लेकिन शर्त है एक कि अगर आप सब तैयार हैं, आर यू रेडी, बार बार पूछना पड़ता है ना, वो तीन बार पूछें तो इकरार होता है ना। चलें जनाब स्वागत करते हैं आपको, वेलकम करते हैं, जी आया नू कहते हैं दीवानों सी, पागलों सी, चलों सी, इधर की ना उधर की।

0: का स्वागत।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
1: Sunrise and music. Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी जनाब, कॉलर्स कुछ ज्यादा थे हमारे साथ और हमारी कोशिश रही कि सबसे बात की जाए, लेकिन फिर भी आयशा आपकी कॉल रह गई। जब तक मैं आपकी कॉल की तरफ आता हूँ, हाय क्या करें जनाब, गिला शिकवा तो रहेगा। कोशिश पूरी करेंगे कि आप सबकी कॉल्स, क्योंकि गैर हाजिरी हुई ना, जुदाई हुई, लास्ट वीक हम नहीं आ सके, तो शायद आपने हमें मिस ज्यादा किया। अच्छा, हमसे ज्यादा आपने हमें मिस किया, जितना हमने आपको याद किया, क्या उससे ज्यादा आपने हमें याद किया, ये भी तो बताएं ना, ना छुपाएं ना, दिल की बात कह दें जनाब, जुबान पे लाए ना। हम इतने समझदार नहीं है ना, आप हमें कुछ बोल के समझाए ना। और जनाब, नंबर एंडिंग विद 76, आपकी कॉल भी मिस हो गई। और तबस्सुम है जनाब इस वक्त मुजफ्फराबाद की खूबसूरत सी वादियों में हमें सुन रही हैं। क्या बात है, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, हजारा, कोहाला, कोटली, चढ़ोई, तत्तापानी, डडियाल, नकियाल, नीलम वैली, हाय। कभी किया ना आपने उस तरफ, कभी आप गए हैं, आपने सफर किया है? मीरपुर से निकले ना पहले, फिर आता है ये इस्लामगढ़, फिर जनाब चकसवारी, फिर डडियाल, फिर उससे पहले ऐसे ना चकसवारी के पास और डडियाल के पास ना ऐसे राइट की तरफ एक ऊपर रोड जाती है, हाँ वहां से असल काम शुरू होता है, तत्ता पानी, और उसके आगे फिर आप नीलम वैली तक जाते हैं, और नीलम वैली से आगे फिर क्या नजारे हैं। तो जनाब बहुत कुछ याद करा दिया तबस्सुम ने हमें, कहती है इंतजार कर रही हूं सुबह से, यानी कि पाकिस्तान की सुबह से वो इंतजार कर रही है। बड़ी बेचैनी से कहती है इंटरनेट जो है ना हमारा वो ऑन हो गया है, घर का इंटरनेट ऑन हुआ है, कहते हैं बाकी मोबाइल सर्विसेज अभी कुछ गड़बड़ है, तो घर के वाईफाई से हमने कनेक्ट किया है अपने मोबाइल को और सनराइज रेडियो को ट्यून करके रखा हुआ है, और बेचैनी से इंतजार था कि आपके शो को सुनेंगे बड़े अरसे के बाद, क्योंकि हमने आपको बहुत याद किया और आपके शो को बड़ा मिस किया। तो आप बताएं, ये लंबी चौड़ी बातें गुफ्तगू जब होगी, तो दूसरी लाइन पे जब बाकी सारे कॉलर्स आते जाएंगे, इतनी क्यूट म्यूट सी बातें होती हैं, तो फिर हम क्या करें। अच्छा, इसके अलावा क्यूट और म्यूट से याद आया, हमारे साथ चौधरी रुखसार भाई हैं इस वक्त, नहीं हमारे साथ नहीं है, साथ ही हैं आप सब जनाब, जो दिल में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं। बिल्कुल जनाब, ऊंची नीची बातों की सदाओं में रहते हैं, हवा पे बिखरती हमारी आवाज और फजाओं में रहते हैं, हमारे अल्फाज में जनाब उनकी याद रहती है, उनकी झलक दिखती है, तो वो कौन हो सकता है। ये चौधरी रुखसार भाई के लिए नहीं, ये मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप इधर उधर ना देखें, आपसे कह रहा हूं, आपका जिक्र रहता है, आप महसूस करें तो। जनाब रुखसार भाई से गपशप हुई, कहते हैं मैनचेस्टर में इस वक्त धूप है, बादल थे, बारिश थी, और जनाब उसके बाद अभी धूप निकली है और आप आगे हैं काशिफ, गाने हैं, गीत हैं, बातें हैं आपकी, और साथ है आपका मैनचेस्टर में हमारे संग संग, तो मजा आ गया। फिर उन्होंने कॉल की और हमसे ढेर सारी बातें की,
लास्ट वीक मैच खेलने गए थे, क्रिकेट का तो बात की थी उन्होंने, कहते हैं मैच हार गए थे हम। फिर मैंने उनको दिलासा दिया, तसल्ली दी, मैंने कहा कोई बात नहीं गम, मैच हारने का गम दुख तकलीफ दिल पे नहीं लेना आपने, पता क्यों? कहते हैं क्यों? मैंने कहा बंदा टीट होना चाहिए, इज्जत बेइज्जती ते हार जीत आन जाने वाली शायद है। तो वो जनाब, उनको थोड़ी तसल्ली हुई, खुश हो गए। वो कहते हैं काशिफ भाई आपसे बात करते हैं ना तो खुल डुल के करते हैं। मैंने कहा खुल के तो करते हैं आप, डुल के भी करते हैं ये आप पता लगा। और बाकी जिनकी कॉल्स मिस हो गई जनाब, आपसे यही कहेंगे हम बड़े बेचैन थे आपसे मिलने के लिए। हर

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

जी जनाब गैरी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और जनाब आप बड़े तंग हैं अपने वर्कर्स से, आप कहते हैं कि सिर्फ आज

मैनचेस्टर में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आपने उनकी तरफ जाना था पता करने के लिए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, यही बात है ना। तो आप कहते हैं कि आप वहां पे पहुंचे तो आपको कॉल्स आना शुरू हो गई, आपके जितने भी स्टाफ के वर्कर्स हैं आप वो कहते हैं जी ये काम नहीं हुआ, ये डिलीवरी नहीं आई, वो डिलीवरी नहीं आई, कहते हैं मैं तंग पड़ गया हूं, बड़े सुकून से मैं आज का दिन गुजारना चाहता था। कहते हैं 3 महीने बाद मैंने एक छुट्टी आज की काशिफ। बात निकली थी कि वो कहते हैं कि हम काम पे होते हैं तो आपको हमेशा सुनते हैं संडे, तो आज छुट्टी की, तो बाकायदा मैंने सोचा कि काशिफ आगे होंगे तो उनको आज भी सुनते हैं, छुट्टी वाले दिन भी सुन के देखते हैं कि मजा आता है कि नहीं, क्योंकि काम पे हम सब वर्कर्स और सारे स्टाफ वाले मिल के आपको सुनते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो कहते हैं जनाब छुट्टी का मजा किरकिरा कर दिया आपके स्टाफ वालों ने, तो कॉल्स पे कॉल्स आपको आ रही हैं। कहते हैं लेकिन बीच में मैं आपको सुन रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत लुत्फ आ रहा है। बहुत शुक्रिया गैरी जी आपकी कॉल का और बताने के लिए कि आपका दिन जनाब ठीक नहीं गुजरा, लेकिन हमारी वजह से थोड़ा बहुत आपको जो है ना वो चस आ रही है। गाना जनाब आपने कहा था कि सलमान खान के आप फैन हैं, तो आपने कहा उनकी मूवी में से कोई भी गाना लगा दे, किसी भी मूवी में से। चले जनाब ये गाना हमने चूज किया है, फिल्म है किक मूवी, और आपने कहा कि आपको किक मिलती है जब हम उनकी मूवीज देखते हैं या फिर उनके गाने उनकी मूवीज के सुनते हैं या फिर आप हमें सुनते हैं। चले जनाब वैसे आपकी बातें सुन के हम आपके फैन हो गए, आप हमारे फैन हो या ना हो, आइंदा भी काम पे जब होंगे तो आपने कहा कोशिश करेंगे कि आपको कॉल करें, क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं लेकिन आप सुनते रहते हैं, ये बड़ी बात है। तो गैरी भाई ये गीत आपके लिए और आपके जो स्टाफ वाले सुन रहे हैं ना, जो आपको तंग कर रहे हैं आपके डे ऑफ के दिन, 3 महीने बाद एक छुट्टी की है आपने, तो वो आपको स्कूल से छुट्टी भी नहीं करने दे रहे, डे ऑफ इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, तो जनाब उनके लिए भी, क्योंकि आपने कहा वो भी सुन रहे होते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ कॉल्स हमसे मिस हो गई हैं जनाब, जान बूझ के यकीन करें मैं कॉल्स आपकी नहीं मिस कर रहा, तो आप जरूर ट्राई दोबारा कर सकते हैं 01274306666। मैं हूं आपका अपना, आपका अपना, किसी और का नहीं, आपसे कह रहा हूं, गैरी भाई से नहीं आपसे कह रहा हूं। गैरी भाई की बातें तो हो गई ना खत्म, आपका अपना काशिफ, क्योंकि जनाब आपकी जुदाई में हमें ऐसे लगता है कि जैसे सूरज निकला हो तो फिर भी आंखों में रोशनी कम रहती है, बारिश हो रही हो बारिश में भीग जाते हैं फिर भी सर्दी नहीं लगती है, सख्त गर्मी में भी हम धूप में चल रहे हो तो ठंड लगती है, रात को सोने के लिए जाते हैं तो नींद नहीं आती है, दिन को जब सारे जाग जाते हैं उस वक्त आंखों में खुमार होता है नींद का, अगर आंख लग भी जाए तो ख्वाब में आप आते हैं, जी जी आप, आपकी बात कर रहा हूं, और जब नींद से जागते हैं तो आपकी यादों से दिलो दिमाग पे आपकी यादों का, आपकी बातों का एक हैंगओवर हो जाता है, आप क्या चीज है जाने कब हो पता करवाएं।

जनाब कुड़ियां शहर दियां। जनाब ये गाना हमने लगाया था और ये बर्मिंघम वालू ने उन्होंने खास तौर पे फरमाइश की थी। अच्छा आज उन्होंने कहा जी आपने कुमार सानो जी का गाना अभी तक नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया मैंने, तो वो बहुत बड़ी फैन है कुमार सानो जी की, तो अक्सर वो हंस के मुझे कहा करती हैं कि पहले हम फैन हैं कुमार सानू के और उसके बाद फैन हैं हम आपके। काशिफ जी आपके फैन बाद में, पहले कुमार सानू के। अच्छा आज हद हो गई, उन्होंने मतलब ना कभी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि कुमार सानू जी के अलावा उन्होंने कोई शिकवा किया हो, किसी और गाने की फरमाइश की हो। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया ना, फिर उन्होंने कहा नहीं कुड़ियां शहर दिया गाना दिलेर मेहंदी जी की आवाज में। अच्छा मैंने दो बार कंफर्म किया, यकीन करें, क्योंकि कितने सालों से वो कॉल करती हैं मुझे, तो मतलब यकीन नहीं आया मुझे। अच्छा अभी भी नहीं आ रहा, सादा हूं ना, सीधा सादा जलेबी की तरह। बट एनीवेज जब हमने वो गाना लगाया कुड़ियां शहर दिया तो खालिद भाई की कॉल आई। जनाब पहली बार कॉल कर रहे हैं, लीड से हमें सुन रहे हैं और उन्होंने जनाब हंसते हुए बात की। पहले तो हम समझे कि वो गिला कर रहे हैं, वैसे मुझे पता लग गया था खालिद भाई कि आप चेजा ले रहे हैं, यानी कि ना चस्का लगा रहे हैं, हमारी टांग खींच रहे हैं, पर कोई नहीं हम यूज टू हैं, हमारी टांग तकरीबन हर कोई खींचता है आके। तो खालिद भाई ने कहा जी पहली बार कॉल कर रहे हैं और आपसे गिला शिकवा है। मैंने कहा क्या शिकवा है? कहते हैं भाई साहब आप तो एक कुड़ियां शहर दियां मोस्टली लड़कियों के लिए गाना लगाते हैं, मैंने नोट किया है। मैंने कहा ठीक है जी, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने कहा भाई साहब ये गाना जो मैंने लगाया ये एक लड़की की फरमाइश आई है, वो भी बर्मिंघम से, मेरा अपना इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहते हैं नहीं, दूसरा गिला ये है कि इस गाने में गोरे रंग की बातें होती हैं, तो अगर मेरी तरह, खालिद भाई ने अपना शिकवा किया, अपनी फरियाद डाली, उन्होंने कहा मेरी तरह जिनका रंग काला है तो उनके लिए आप कभी गाना लगाएं तो फिर मैं आपको मानूंगा या कोई बात कहें। आप हमेशा गोरे रंग की बातें, गोरे रंग पे गाने, तो खालिद भाई आपका चैलेंज कबूल किया हमने फौरन से पहले। यकीन माने बर्मिंघम वाले नाराज होंगे, उन्होंने कहा था कुड़ियां शहर दियां दिलेर मेहंदी जी का, और दूसरा मैंने बताया कि उन्होंने कहा था कुमार सानू जी का गाना अभी तक नहीं लगा, तो वो मैंने एक गाना एक लगा के रखा था उतरा ना दिल में कोई, तो वो गाना हमने उतरा ना दिल में कोई उतार के आपके लिए गाना लगाया, आपने पहली बार कॉल की। अच्छा हमारे काला, आपका रंग काला है तो काला रंग बनाने वाला रब की जात है जनाब, वो जिसको जो रंग दे वही खूबसूरत है, बनाने वाली जात है जनाब, काला हो गोरा हो। वैसे ये गाना जब आप सुनेंगे ना तो हर कोई ख्वाहिश करेगा कि मेरा रंग सांवला या काला होता। आपको क्या कदर काले रंग की सरकार, यहां तो लोग धूप में बैठते हैं दो दो तीन तीन दिन गर्मियों में कि थोड़ा सा रंग सांवला हो जाए, इड्डे चिट्टे हैं। अच्छा हमारे एक दोस्त थे वो काले स्याह, उनका काला स्याह रंग था, बहुत ही ज्यादा काला। तो जब बंदा थोड़ा थोड़ा मतलब दाढ़ी मूछ नहीं नहीं आती है ना, तो बंदे को बड़ा शौक होता है कि मैं दुनिया फतह कर लूं। तो उनको शौक हुआ कि घर वालों से उन्होंने जिद की कि मुझे कोई थोड़े से पैसे दें, मैं कोई कारोबार करूंगा, छोटा मोटा कारोबार। घर वालों ने थोड़े बहुत पैसे दिए कि बच्चे को छुट्टियां हैं कॉलेज में, तो चलो देखते हैं क्या चंद चढ़ाएगा। तो उनका रंग था काला स्याह जनाब, तो बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे, और काले रंग वाले ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, पुरकशिश होते हैं। वैसे ही मैं बता दूं आपको, ये गाना सुनिएगा आपको समझ लग जाएगी। अच्छा उन्होंने कारोबार किया और उन्होंने मिट्टी के तेल का कारोबार किया, छोटा सा ऐसे ना उन्होंने छोटा सा खोखा रेडी नुमा लगाया। तो हम दोस्तों में से एक दोस्त उनके पास गए तो उसने कहा जनाब ये बताओ कैसा जा रहा है कारोबार? उसने कहा बहुत अच्छा, ईमानदारी से कारोबार कर रहा हूं, एक नंबर चीज बेचता हूं। उसने कहा यार पक्की बात है, कोई दो नंबरी नहीं। उसने कहा बिल्कुल असल तेल बेचता हूं, मट्टी का तेल। तो दोस्त ने कहा मैं चेक कर लूं, तो वो हमारे जो दोस्त थे जिनका रंग काला था उसने कहा चेक कर लो। तो हमारे वो जो दोस्त थे हमारी तरह सादे से, उन्होंने मट्टी के तेल के पास लाइटर जलाया,
उसके बाद हमारे जो काले दोस्त थे ना, काले रंग वाले, वो वहां वहां से भी काले हो

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं, टाइम हो चुका है 3:05।

जी जनाब खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने याद किया। अच्छा अब आप हमारे रेगुलर कॉलर हो गए। वो कहते हैं ना, बारिश का पहला कतरा मुश्किल होता है, उसके बाद तो जड़ी लग जाती है। पहली बार मुश्किल थी कसम तोड़ना। आप कहते हैं रेगुलर जनाब कॉल किया करेंगे, बहुत शुक्रिया। और जनाब आपने भी कहा कि आप इंतजार कर रहे हैं कुमार सानू जी के गीत का। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि बर्मिंघम वालों से अल्लाह बचाए, वो तो कुमार सानू जी का गाना अगर हम कभी किसी आवर में ना लगा पाए तो जनाब हमारी श्यामत आ जाती है। तो खालिद भाई आपके लिए भी यही गीत होगा, आपने कहा कोई सा भी लगा दे। कॉल इसलिए की कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी, दिल को लगी, आप बहुत हंसे, गाना भी आपने सुना और आपको अच्छा लगा काला शाह काला। अब तो आपको काले रंग का कोई इतराज नहीं है ना, कि हम बायस हो जाते हैं, शायद गोरे रंग वालों के लिए ही बातें करते हैं और गाने लगाते हैं। आज रच के हमने आपके काले रंग की तारीफ की और कदर बताई कि काला रंग कितना जनाब अट्रैक्टिव होता है और काला रंग होने के लिए लोग कितने जतन करते हैं यहाँ यूके यूरोप में। आपने कहा अब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हंसाया आपने भी, थैंक यू। सीमा जी, कभी आप कभी हम, कभी हम कभी आप, नहीं ये सीमा जी से नहीं कह रहा, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी हम कभी आप, कभी आप कभी हम, और बस इसके सिवा कोई नहीं। दिल में उतरा हमारे, मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा होगा पर आपको यकीन करना पड़ेगा। किसको यकीन करना पड़ेगा, ये आपको नहीं कह रहा, ये मैं आप सीमा जी को कह रहा हूं। जी सीमा जी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि हमने पूरी कोशिश की कि आपकी कॉल को पकड़ पाए। पकड़ इसलिए कहा कि आपकी कॉल आती थी ऐसे भागते भागते और हम उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, एक लाइन से दूसरी लाइन पे जब आते हैं आपकी तरफ तो जनाब आपकी कॉल बंद हो जाती थी, फिर हम आते थे दूसरी लाइन पे बात करना शुरू करते थे, फिर आपकी कॉल आना शुरू हो जाती थी स्क्रीन पे दूसरी लाइन पे। अच्छा उधर हम जल्दी में खुदा हाफिज करते थे कि आपकी कॉल पकड़ पाए, इतनी देर में आप फिर छूमंतर। और अभी हम बातों में गुम हो गए हैं और आप फिर आ गई हैं और हाँ होप कि इस बार हम आपकी कॉल के पीछे भागते भागते साव सा ना हो जाए। थोड़ा सब्र कीजिएगा, आते हैं हम आपकी तरफ। नहीं ये सीमा जी से नहीं कह रहा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आपसे, जी जी आप। सीमा जी की बात तो हो गई ना, तो आपकी तरफ जनाब हम आ रहे हैं। सनराइज रेडियो आप सुन रहे हैं 103.2 FM पे और 100.6 FM पे, यॉर्कशायर की वादियों में और दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं सनराइज रेडियो .fm के जरिए। और कुमार सानू के सुनने वाले जितने भी हैं उनके लिए ये गीत होगा, बर्मिंघम वालों के लिए होगा, सोनिया आपके लिए होगा। अच्छा हमें किसी ने कॉल की, उन्होंने कहा लास्ट वीक आप नहीं आए ये आपसे पता लगा। मैंने कहा वो क्यों, कहते हैं दिल को दिल से राह

साहब ये बताएं कि आपने क्यों नहीं सुना, हम आए तो नहीं लेकिन आपने इस रेडियो क्यों नहीं लगाया। कहती हैं हमारे घर ढेर सारे मेहमान आए थे उस दिन, बहुत बड़ी हमारी फैमिली है तो तकरीबन बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आए थे तो इसलिए हम बिजी थे। तो मैंने कहा फिर मैं तो गैर हुआ। कहती हैं नहीं आप भी फैमिली हैं लेकिन आप आते तो नहीं है ना, वो सारे आए थे खाने पे तो हम बहुत बिजी थे। फिर उनने हमसे पूछा आप कहाँ बिजी थे, मैंने कहा मैं खाना खाने में बिजी था, आपने नहीं बुलाया तो हमारी भी तो फैमिली है वो भी इनवाइट करते हैं, आप खाना पकाने में बिजी थे किसी और के लिए और हम खाना खाने में बिजी थे किसी और अपनी फैमिली मेंबर के घर, लेकिन आपको याद कर रहे थे। ये उनसे नहीं कह रहा जिन्होंने रेडियो नहीं लगाई, ये आपसे कह रहा हूँ। आपको छींकी आई लास्ट संडे, आई ना, वो मैं याद कर रहा था क्योंकि उतरा ना दिल में कोई।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
4: जनाब, सनराइज रेडियो और एनर्जी हाई वोल्टेज होगी है काशिफ की। मैं हूं आपका, सिर्फ आपका अपना काशिफ। नाम तो सुना होगा ना, काशिफ कहते हैं प्यार प्यार में। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपकी कॉल हमने पकड़ ली, पकड़। और जनाब, आपने हमें थोड़ी सी जो है ना वो चाबी भरी, और आपको लगा कि जैसे वो खिलौना होता है ना चाबी वाला, उसमें चाबी भले ना, तो वो जनाब अपने कर्तव्य दिखाने लग पड़ता है, ऐसे गोल गोल फिरने लग पड़ता है, अपने चन चढ़ाता है, अपने कर्तव्य दिखाता है। अगर आप खिलौने को चाबी भरें, याद है ना बचपन के वो खिलौने चाबी वाले, तो सीमा जी को ये गलतफहमी हो गई कि वो बातों बातों में हमें उस खिलौने की तरह चाबी भरेंगी और हम जनाब बिल्कुल उस खिलौने की तरह चार्ज हो जाएंगे और कर्तव्य दिखाएंगे, बातों से रंग भरेंगे। और सीमा जी, गलत नहीं समझा आपने, आपने बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल ठीक समझा और सोचा हमारे बारे में। जनाब, हमें तो एक इशारा चाहिए होता है, एक बहाना चाहिए होता है, और वो इशारा, वो बात आपने हमें, वो मौका आपने दे दिया अपनी ढेर सारी बातों से। और जनाब, फुल चार्जिंग हाई वोल्टेज, और अब हूँ चंद चढ़सी। तुसी पहले तो पंजाबी च गप लाई साडे नाल, तुसी क्या काशिफ, अज दसो खा के की आए हो? मैंने पूछा, क्यों जनाब, ऐ क्यों कह रहे हो? उन्हें फिर पंजाबी च अगू गल वधाई, उन्हें क्या, क्योंकि अज मिठिया मिठिया गल्ला थोड़िया दिल दे आर पार हो रही ने। ते मैं क्या, मैं ते एहो जिही गल्ला करना, तुसी अज कन्न साफ किते होने ने, ते साड़ियां गल्लां तुहाडे कन्नां चों हो के तुहाडे दिल दिमाग ते असर कर रहियां ने। कहिंदे ने, नी काशिफ, इन्ने सालां तों सुणनी आ, अज तेरियां गल्लां वाकई साडे दिल च साडे दिमाग च समझ आ रहियां ने। कहिंदे ने, तेरियां गल्लां सुणियां ते पेट्रोल स्टेशन ते गड्डी पार्क करके बैठियां ते कालां कर रहियां, ते तू चुकदा ही नहीं पिया कॉलां, ते मैं कित्ती जा रही हां कॉलां, ते मैं भी क्या अज गल करके छड़ांगी, ते जे तू गल होएगी काशिफ को नाल, ते फिर पूछांगी कि काशिफ की खा के आया है। ते मैं फिर उन्होंने दस्या, जी मैं अज सवेरे सवेरे जरदा, रात दा बचिया जरदा मिठा, उहदे ते दही पा के, उत्तों थोड़ी होर दो चम्मच चीनी पा के, मिठा जरदा रात दा बचेया उन्हों पहले किता गरम, फिर उदे ते पाया दही, फिर उदे ते पाई दो चम्मच चीनी, फिर प्लेट भर के मैं वो खा के आया। कहंदे ने, आहो ताई, ए फिर जरदे ने चन चढ़ाया, तेरा कमाल नहीं है। मैं क्या नहीं, मेरा कमाल ते बिल्कुल नहीं है, ये ताड़ा सुनने दा कमाल है। बहरहाल जनाब होर भी तुसी सानू एक दो गल्लां कहियां ने, तुसी मनो उस राह ते ना पाओ जिस राह ते मैं गुम जावां। जी ये सीमा जी से नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं आपसे कह रहा हूं जो कॉल करते हैं चले जाते हैं, कॉल करते हैं चले जाते हैं। तनवीर अख्तर जी तुसां नाल गल होसी ना, तुसां कॉल करने हो ते किया फिर बंद करी छोड़ने हो, हुण वेट करे हो इथे रवे हो अल्लाह जायो ना। और जनाब वापिस आई वो कॉलर, यार आज मुझे समझ नहीं आ रही, सारे जो मर्द हजरात हैं उसमें से सिर्फ खालिद भाई की कॉल आई है ना, है ना, क्या चक्कर है। अच्छा मुझे ये सोच के एकदम से मेरे दिल को हाथ पड़ा है, वाकई है ये कैसे जनाब, आज हम दूसरे घंटे के शो के बिल्कुल आधे में आ गए हैं और मर्दों में से सिर्फ मेल्स में से सिर्फ एक कॉल आई है खालिद भाई लीड से। नहीं एक और कॉल आई थी ना यार काशिफ, बादाम बदाने पैणगे जनाब, 10 बादाम नहीं उन भी करने पैणगे। रुखसार भाई ने भी तो कॉल की थी ना यार, रुखसार भाई कमाल है जनाब, वर्चुअल जादू की जफी आपके लिए, नहीं रुखसार भाई के लिए नहीं आपके लिए जादू की जफी। सीमा जी ये गाना आपके लिए, आंटी दीबा जी आपके लिए, आपकी खूबसूरत क्यूट म्यूट बातों के लिए।

0: thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977 201226. Mirdosh Kumar 07899 055525. Gurkirit 07886 545970. Usha 0793 1788 062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: Oh yeah, yeah, yeah.
5: Oh yeah, yeah, yeah. ठीक है जनाब. अच्छा जनाब, ये गाना हमें क्यों लगाना पड़ा? उसकी वजह ये है कि जनाब पकड़े गए हम रंगे हाथों. बिल्कुल जनाब, मेरा बादाम का खर्चा आज इस वीक से डबल होगा इंशाल्लाह. ये पक्की बात है. ये मजाक खाने पीने का मैं मजाक नहीं करता हूँ भाई साहब. बाकी मजाक अपनी जगह, हर तरह का मजाक हम कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, नहीं खाने पीने का मजाक नहीं. खान पीन अपना अपना. तो डबल होंगे जनाब बादाम, फिर देखेंगे नेक्स्ट जब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, फिर देखेंगे हमारी याददाश्त में कुछ अफाका हुआ या नहीं हुआ. वरना जनाब अगर अफाका ना हुआ तो 20 से हम 40 कर देंगे बादाम. बिल्कुल जनाब, सारी बचत बादामों पे लगा देंगे जब तक, क्योंकि जनाब बड़ी शर्मिंदगी होती है यहाँ पे बैठ के जब आप कोई बात करें और फिर बात आप बुलक्कड़ बन के करें तो फिर आपकी चोरी पकड़ने वाले जनाब बहुत सियाने सियाने बंदे होते हैं यहाँ पे, आपको बहुत कुछ वो कहते हैं ना छठी का दूध याद आ जाता है. गैरी पाजी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. गैरी भाई थोड़ी कॉल दा तुसी कॉल की थी, तुसी क्या सरकार की गल है? मैंने कहा की होया जनाब? ओ सरकार असी बंदियां च नहीं आंदे, असी कोई कुड़ियां जाने हैं. मैंने कहा होया की? अच्छा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि वो क्या कहने वाले हैं. तो कहते हैं जनाब तुसी क्या पहले कि हाले तक अद्ध विशकार तुसी आ गए हो शो दे, तो तुहानू मर्दां चो खाली एक दी कॉल आई है खालत भाई दी, फिर तुसी एक होर ना लिया, तुसी क्या जी रुखसार भाई दी भी कॉल आई है, मैनू याद आ गया. कहंदे भा जी असी भी तुहानू कॉल कीती है, थानू अपना आई डी कार्ड चेक कराइए या की गल है, असी भी मर्दा च ही आने सू याद ही नहीं किया, सू भुल गए हो हाए, बल्कि हा हाए. तो गैरी बाजी बहुत बहुत शुक्रिया. चलो इसे बहाने तुसी कॉल तो दोबारा की ना, मैं ए खुश हाँ कि तुसी दोबारा कॉल करके साडे नाल भावें शिकवा किया कि जनाब असी तुहानू गिणिया नहीं जदों मर्दा की कॉलों की गल आईए, तो असी तुहानू भुल गए हाँ. तुहानू की पता मैं भुल गया सा या जान बुझ के? मेरा दिल कह रहा सी कि तुसी कॉल करोगे तो शिकवा करोगे, तो इस बहाने मैं थोड़ी मिठी जी आवाज सुनांगा, थोड़ी मिठी मिठी चूर आवाज सुनांगा जो तुसी कॉल करोगे. नहीं ये मैं गैरी भाजी नू नहीं कह रहा, ये मैं हुण तुहानू कह रहा कि जदों कदे तुसी कॉल करोगे मैनू तो मैं थोड़ी मिठी आवाज सुनांगा. मैनू लगता है तुम्हारी आवाज़ बड़ी मिठी होएगी। एनीवेज जनाब गैरी भाई के लिए उन्होंने कहा कि हूँ जनाब जो गाना मैं कहांगा वो लाना पेगा। लास्ट आवर से तुसी अपनी मर्जी का गाना लाया पंजाबी, हूँ तुहानू गाना वो लाना पेगा जो मैं कहांगा। जुर्माना है तुहानू। लो जी जनाब ये गाना उन्होंने सिलेक्ट किया, उन्होंने दो गाने बताए थे, खैर दूसरा गाना साढ़े कोई नहीं सी तो उन्होंने कहा फिर ए ही लाओ फिर, बल्कि पहली चॉइस भी आपकी यही गीत था जी। मेरा भी बड़ा फेवरेट गीत है। और इस वक्त जनाब आप, मैं नाम नहीं ले सकता एक जगह का, वहां पे आप क्यू में खड़े हैं और क्यू में खड़े होके आपने हमें हमसे छेड़छाड़ की, हम तुसी साडे नाल मतक्का लाया, झगड़ा लाया। अच्छा क्यू दे भी जड़े होर बंदे खलोते हुए ने उन्होंने सुन के तुहाडी साडे नाल जड़ी लड़ाई हुई है बहस वबासा तुसी कीता है वो सुनते पे सुन या कोई नहीं, ए दोबारा एक बार होर कॉल करनी पेगी तुहानू। बहरहाल कहते हैं कि जनाब लंबी सी क्यू है और ना पूछो। टिल दे उत्ते खाली इको कुड़ी है सर्व करदी पी, एडी लंबी क्यू है भाजी, एडा वड्डा स्टोर है, वेखो ना कोई पंजा बंदा खलोता पिया, एक बंदा जनाब टिल ना एक टिल खोली हुई है। अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप, अच्छा लॉन्गेस्ट वेट एवर यू हैड टू क्यू में खड़े होने का, जो आपकी जिंदगी में कभी आप याद करें वो मुझे बताएं कॉल करके कि आपको लॉन्गेस्ट क्यू अपनी लाइफ की जहां पे आपको वेट करना पड़ा हो, इंतजार करना पड़ा हो, गैरी भाई की तरह किसी स्टोर में, किसी टिल पे, किसी भी जगह। कोई याद आ रहा है आपको कि वो आपको अभी भी ना भूल रहा हो, वो वाला इंतजार, वो लंबी सी क्यू। मुझे भी याद आ गया कि मैंने अपनी लाइफ में कहां पे वेट किया और कितना वेट किया। चले मैं बताऊंगा, पहले आप बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा लंबी क्यू, लंबी लाइन, लंबी कतार में कहां पे और क्यों वेट किया और कितना वेट किया। बात कहां से शुरू हुई थी और कहां निकल गई, ये होता है जब आपका दिल कोई चुरा ले। किसकी बात कर रहे हैं जनाब, आप इधर उधर ना देखें, आपकी बात कर रहा हूं। और किधे जरूरत है काशिफ दा दिल लुटे, तुसी साडा दिल लुटिया, और किसी ने तुसी दसिया ही नहीं सी अपने दिल दा, बड़े होशियार हो तुसी।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जनाब, Sunrise Radio के स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 3:42 और आपसे मिलेंगे खूबसूरत से क्लासिक हिट ऑफ द आवर के साथ. जी जनाब, जो फ्लैशबैक में होगा वो होगा आप सबके नाम.
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से है जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर भेजा गया है. जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होती, ये आपकी रुजय रोटी और आपकी साख होती है. इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस बनाया है जो बिजनेस के लिए कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग. असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए. मर्सिडीज बेंज वैन्स हमेशा आपके साथ है. आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें. नियम और शर्तें लागू. मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है. नियम और शर्तें लागू. अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं.
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770-6923-788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274 488 935.

मेरी जिंदगी में आना, आए हाय जनाब, ये मैं आप ही को कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ थे नदीम मंसूर भाई और उनसे हमने गपशप लगाई, बड़ा लुत्फ आया। बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, आप अक्सर उनकी आवाज़ सुनते रहते होंगे, शामिल होते हैं हम सब जितने भी हमारे साथी प्रेजेंटर्स हैं ना, हम समेत

0: दूध पत्ती 4 बजे मैं बनाता हूँ। लग गया जी, धीरे धीरे आ गया गाना जी। हम साथ में आपसे गपशप लगा रहे हैं और साथ में गाने भी ढूंढ रहे हैं। दोस्त आते हैं और जब वो फरमाइश करते हैं ना, फिर क्या करें जनाब, फिर गाने लगाने पड़ते हैं ना हमें, वो वाले जो आप कहते हैं। ऐ तो को जल्दी जल्दी जरा गाना पहले मैं कितने ऐसी क्यों वो डिलीट हो गया मेरे को। ओहो चलो कोई गाल नहीं, थोड़ी दुध पत्ती दे नाल थोड़ा गाना हो जाए ना नदीम मंसूर भाई, तो समझो साड़ी दिहाड़ लग गई है। कहते जनाब मैंने उनको कहा आप दुध पत्ती ऐसे आप दुध पत्ती तैयार करें, जितनी देर में आपकी दुध पत्ती तैयार होती है इतनी देर में हम गाना लगाते हैं। तो क्या ख्याल है अभी अभी उन्होंने कॉल रखी है तो दुध पत्ती बन जाती है मिनट दो मिनट में। यहाँ यूके में तो कैटल वाली दुध पत्ती होती है ना, कैटल च पानी गर्म किया ते थोड़ा दुध पाया, थोड़ी पत्ती ते थोड़ी चीनी, थोड़ा पानी, पानी ते फिर कैटल च उसी ना, पानी क्यों पासा, की हो गया काशिफ मनु ही सादा है तू। तो फिर वो कैटल वाला गर्म पानी उसमें डालें पत्ती में, तो उसके बाद उसको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद थोड़ा जो दूध पा दियो तो दूध पत्ती तैयार होगी, है ना, ऐसे ही होती है ना। तो मेरे ख्याल में उनकी उनकी नहीं, उन्होंने जो दूध पत्ती बनाई है वो तैयार होगी होगी। और हमने उनसे वादा किया था कि आपने जो गाना फरमाइश किया है शहजादा भाई, शहजादे भाई के नखरे नहीं उठाने ते असा फिर और की चुकना है, जे भरावां दे नखरे ना चुके ते फिर खेत सवा चुकिया। हां गल करो ते फिर भैड़ी लगदी है तुहानू। तो जनाब भाई का नखरा उठाते हैं क्योंकि भाई ने इस वक्त उठाया हुआ है हाथ में क्या, चाय का दूध पत्ती का कप जी ओ काशिफ नहीं हो रही फड़सा फड़सा तेनों ये फड़न गे तेनों लोग, तू फड़िया नहीं जांदा पर एक दिन तू फड़ाई दे से। वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं आप बताए ना, कोई है ना मावरा 100 साल फिर भी चले चैलेंज, एक रेस लगी हुई है तुसी फड़ के विखाओ ते मन्ना। बात तो ना हुई ना जनाब, 12-15 साल लगा दिए रेडियो पे बातों की जलेबियां तलने में, अल्फाज से खेलने में, आप ही ने सिखाया और अब हम हूं असी फड़े जाइए ना जी, सब फड़े जाएंगे पर साडा फड़िया जाना थोड़ा मुश्किल है। फड़े जाओगे फिर तुसी साबित किंज करोगे, दसो ना चैलेंज। बहरहाल जनाब मजा तो आया होगा, आपकी बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं नदीम मंसूर भाई की। मजा तो आया होगा नदीम मंसूर भाई, आपने हाथ में चुका हुआ है दूध पत्ती का कप और साथ में आपका फेवरेट गाना जो आपने फरमाइश किया, क्या बात, लगाएं चुस्कियां। नदीम मंसूर भाई को नहीं कह रहा, अब आपको कह रहा हूं लगाई चुस्कियां। अगर आपने भी दूध पत्ती बनाई है, चाय का कप है या कॉफी का,
1: धीरे धीरे से मेरी जिंदगी।
0: नदीम भाई ने बताया 4 बजे चाय का टाइम होता है, हमें नहीं पता था,
1: धीरे से
0: तो एंजॉय करें, चुस्कियां लगाएं।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 4:06 हो चुके हैं जनाब, 4:06। और जी हाँ, बिल्कुल गाने होंगे जाने से पहले, आखिरी आवर में हम पहुंचे हैं। अगर पहुंच गए हैं तो फिर कोई कमाल तो होगा, दमाल तो होगा, कुछ वबाल तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ थोड़ा बहुत बातों का जंजाल तो होगा। दिया हुआ किसी का आपको अपने हाथ से कड़के, उसके ऊपर नाम लिख के आपके पास कहीं छुपाया हुआ किसी पेटी में, संदूक में पुराना मोहब्बत की निशानी वाला रुमाल तो होगा। ये वाला रदीफ काफिया मलाना जरा मुश्किल था, आखिरी जो मिसरा था, लेकिन इसी तरह दिल की बड़ास निकलती है ना, क्या करें। हम मर्दों पे बड़ा पैरा होता है भाई साहब। अच्छा, पैरा और कोई नहीं लगाते, हम मर्द ही एक दूसरे पे पैरा लगाते हैं। ख्वातीन में ये बातें नहीं होती हैं, पता है, पैरे शहरे की। और जनाब, बात है सारी मजबूरी की, और जब बंदा आदत से मजबूर हो ना, तो फिर उसका कोई हल, कोई दवाई, कोई हकीम, कोई भी नुस्खा काम नहीं आ सकता। आदत बड़ी बुरी चीज है। तो जनाब, हमारे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब एक जगह पे हम इस वक्त अटके हुए हैं, हम भी क्यू में थे, लेकिन एक स्टोर में जनाब, वहां पे उनकी आदत है ये कि वो इंतजार करवाते हैं कस्टमर्स को हमेशा, लेकिन हमारी मजबूरी है यहाँ पे आना। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और हस्ती हैं जिनको आप जानते हैं, हमेशा हमारे शो में शामिल होती हैं, हलीमा। वो भी इस वक्त शॉपिंग कर रही हैं, पर उन्होंने बताया नहीं कहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, बस उन्होंने गोलमोल बात की। उन्होंने कहा जी हम शॉपिंग कर रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शॉपिंग के दौरान मैनेज किया आपको ये बताने के लिए कि आपको पता लग जाए कि हम आपको सुन रहे हैं। वाकई जनाब, ख्वातीन हो, शॉपिंग कर रही हो और उनका ध्यान इधर उधर हो जाए शॉपिंग के अलावा, मेरे जैसे बंदा नाचीज हकीर फकीर की तरफ आपका ध्यान चला जाए शॉपिंग के दौरान, कैसे हो सकता है। ये तो मुझे चक्कर आ गए आपकी बात सुन के कि आप शॉपिंग करते हुए मुझे सुन रही हैं, और फिर उसके अलावा आपने मुझे बताया भी सोने पे सुहागा, कमाल नहीं हो गई। अच्छा सोनिया, आपने गाना बताया था, वो इतना प्यारा गाना था, मैंने पहले कभी नहीं सुना था, पुराने वक्त का गाना था, कोई मेरे ख्याल में 70s-80s का कोई गाना था। हाँ हाय, वो गाना किधर मैंने लिखा था, किचमिच हो गया ना, कॉल बहुत सारी हैं, उधार बहुत चढ़ गया है, मोहब्बतों का सबके नाम लेने हैं, और आखिरी आवर भी आन पहुंचा है, करूं तो करूं क्या, क्या करूं क्या ना करूं, ठंडा ठार पानी पी पी मरूं, क्या करूं। चले अच्छा जनाब, आज सामिया नहीं आई है, हमारी टिकटॉक की बहुत बड़ी फैन है और टिकटॉक पे वो हमें फॉलो करती रहती है, पूरा वीक फॉलो किया, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करती हैं, हमारी किसी तस्वीर को मिस नहीं करती हैं, अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपनी लाइकिंग शो करती हैं, लेकिन आज गायब हैं, ये कैसे हो गया। चलो उनको छींके आएंगी तो वो ज़रूर बताएंगी कि क्या हो गया जनाब, ये नाराज़ हो गई हैं कि लास्ट संडे हम नहीं आए तो इस संडे वो नहीं आएंगी, होता ना। अच्छा जनाब, अब बात कर ले हम, चौधरी रुखसार भाई दोबारा से आए, हमने उनसे भी पूछा कि जनाब आपने, जैसे हलीमा ने बताया कि वो शॉपिंग कर रही हैं, क्यू में हैं, और शॉपिंग करते हुए उन्होंने हमें बताया, और उनका बड़ी लंबी क्यू है, काशिफ अभी क्यू में लगने लगी हूँ और फिर देखती हूँ क्या होता है। और जनाब चौधरी रुखसार साहब ने बताया हमें, उन्होंने बताया कि उन्होंने जिंदगी में जो सबसे लंबा वेट किया ना क्यू में, वो भाई साहब था, वो गए थे एम्बेसी में, उनका वीजा उन्होंने अप्लाई किया था यूके आने के लिए, तो वो इस्लामाबाद गए और उधर जाके कहते हैं वीजा लेने के लिए जब गए, पता नहीं था वीजा उस वक्त बड़ा सस्पेंस होता था, पुराने वक्तों की बात है, तो इस्लामाबाद जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा जब हम वहां पे पहुंचे ना तो हमने क्यू में सुबह 9 बजे लग गए क्यू में, शामी 4 बजे जाके हमारी बारी आई। कहते हैं ना पूछो काशिफ भाई, वो इंतजार, वो क्यू में इंतजार आज भी याद है। फिर आपने हमसे पूछा कि हमने जिंदगी में सबसे ज्यादा इंतजार कब किया क्यू में, तो जनाब मैंने इंतजार किया था। अब आप कहेंगे कि हर बार गोलमोल कर जाता है।

बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह आप जाते हैं आते हैं। अच्छा कभी मसला हो जाए ना तो ऐसे ऐसे शुगर लगते हैं, अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो वहां पे जनाब हमने तकरीबन हाँ तकरीबन 14 घंटे का 14 आवर्स का वेट किया क्यू में, कभी बैठ के कभी लेट के कभी कुछ करके कभी कुछ करके, ना पूछें। अब इससे कुछ में बड़ी कहानी है, अगर आपने इंतज़ार किया हो इतना लंबा तो आप समझ गए होंगे 14 आवर्स मतलब आपको बहुत सारी आपकी जी हाँ ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, खाना पीना वॉशरूम जाना बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं। तो जनाब 14 घंटे 14 आवर्स एक बंदा क्यों में, क्या आपने कभी ये रिकॉर्ड तोड़ा है मेरा या इससे ज़्यादा आपने वेट किया है तो बताइएगा कहीं भी जिंदगी में। और हाँ एक और साहब ने इंतजार किया है भाई साहब, उन्होंने 14 घंटे नहीं उन्होंने सालों वेट किया है क्यू में। तो हमने पूछा कि क्यों आपने इतना वेट किया, इतना सालों का वेट कौन करता है क्यू में, तो बस हम भी आदत से मजबूर। अब मुझे ये नहीं था पता कि खाली आपका ये काशिफ ही आदत से मजबूर नहीं है, और आवाम भी मेरी तरह तपी पड़ी है, बिल्कुल तंदूर की तरह तपी हुई है, और वो भी आदत से मजबूर हो सकते हैं, अकेले हम ही नहीं आदतों से मजबूर। तो सोचे जरा उन्होंने क्या कहा कि इतने साल उन्होंने क्यों में वेट किया। उन्होंने कहा काशिफ भाई हम 6 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूं भाइयों में, और जनाब मैंने क्यों में सबसे बड़े भाई की शादी हुई, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की। कहते हैं काशिफ भाई कितने साल मैंने अपने भाइयों की क्यू में शादी का वेट किया।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
4: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
5: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
4: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
5: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेड
4: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732 जिनार रेस्टोरेंट हर मौके को बनाए खास
0: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन
6: जी जनाब जैसे जैसे जुदाई का टाइम पास आता जा रहा है दिल डूबता जा रहा है आपकी याद आएगी तो क्या हाल होगा हमारा
7: मेरे दिल से
6: आपका दिल क्या कहता है या फिर हमारा दिल ही पागल है और पागल रहता है

जी जनाब, आती है आप सबकी याद बहुत ज्यादा आती है, क्या करें क्या करें और क्या ना करें, समझ नहीं आती है। लेकिन हमें किसी ने कॉल करके ये भी कहा था कि समझ हमें काशिफ आपकी भी नहीं आती है। कुछ दोस्त हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बात की किसी एक हमारे दोस्त से, और फिर हमारे दोस्त ने हमसे बात की कॉल करके। उन्होंने कहा, हमारे दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप तो काशिफ को जानते हैं, क्या काशिफ इतना सादा है जितना सादा ये बातें करता है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल काशिफ सादा नहीं है। ऐसे होते हैं दोस्त, ऐसे दोस्त हों तो फिर दुश्मनों की किसको जरूरत है। मुझे पता है मैं सादा नहीं हूं, सीधा सादा हूं, लेकिन आपका तो काम बनता था ना, कह देते कि काशिफ सादा है, लेकिन आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं। आपने क्यों नहीं कहा उसकी वजाहत आपने हमें बताई फोन करके, बहुत शुक्रिया। ये गाना जनाब इस बात की यकीन दहानी आपको करा रहा है, यकीन दहानी। पता किनको यकीन दहानी करा रहा है ये गीत और इसके बोल, कि जिनको गाने सुनने का शौक है बातें सुनने का नहीं, ये उनको यकीन दहानी करा रहा है कि अब आपके लिए बहुत सारे बैक टू बैक गाने आएंगे जनाब, आपका दिल खुश हो जाएगा, जिनको गाने सुनने का शौक है और जिनको हमारी बातों की लत लगी है, चस्का लगा है उनके कानों को। एक जुबान का चस्का होता है, एक कानों का चस्का होता है, या फिर उनको कोई अपनाइयत लगती है, कोई अपनापन महसूस होता है, कोई शरारत महसूस होती है, मुस्कुराहटों का कोई बहाना महसूस होता है आपको हमारे अल्फाज में, हमारी बातों में, तो उनको ये यकीन दहानी के लिए ये गाना और इसके बोल हैं कि अब काशिफ के जाने का टाइम आ गया है। अक्सर एक लफ्ज आप सुनते हैं ना रेडियो पे, टीवी पे, वो क्लिप्स में, सोशल मीडिया पे, दो लफ्ज का वो आता है अक्सर, वो कहते हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। तो जो घबरा रहे हैं, जिनका दिल मेरे दिल की तरह डूब डूब जा रहा है जुदाई की वजह से, उनको कहूंगा हम भी आपको बुला नहीं सकते, जैसे आपको हमारी बातें, हमारी यादें सताती हैं, हमें भी

0: जनाब कॉल आई और उन्होंने नाम नहीं बताया और उन्होंने कहा लास्ट वीक हमने रेडियो लगाया, पता नहीं अंग्रेजी में कुछ कहती हैं, जब भी आती हैं इंग्लिश में कोई गिटपिट करती हैं, अभी वो सुन रही होंगी और जरूर हंस रही होंगी। तो अंग्रेजी में जो कुछ भी कहती हैं तो मैं अंदाजे ही लगाता हूं कि वो क्या कह रही हैं। तो अभी जो मैंने अंदाज़ा लगाया उनकी अंग्रेजी से, इंग्लिश से, जो कुछ भी उन्होंने इंग्लिश में कहा, तो उन्होंने कहा कि I always look forward to your show, Kashif. So thank you so much. It means a lot to me. और आपने कहा लास्ट वीक जब हमने रेडियो लगाया आप नहीं आए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। आप इतनी देर से आई और हम राह देखते रहते हैं आप सबका, आंखें हमारी थक जाती हैं। कभी आपने किसी का इंतजार किया? नहीं ना किया, आपको क्या पता। चलें जब हम नहीं होंगे ना, कहते हैं जब बंदा ना हो तो फिर उसकी कदर आती है, जब हम नहीं होंगे ना तो लगेगा पता आपको, कदर जानेंगे फिर आप हमारी।
1: जो तुम जाओगे
0: फिर ये सुने ना, फिर ऐसे आप पछताएंगे,
1: जो तुम जाओ
0: हाथ मलते रह जाएंगे,
1: जो

0: जी जनाब, जैसा कि मैंने कहा था कि बैक टू बैक गीत होते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश होती है जो गीतों के शेदाई हैं उनको ढेर सारे गीत सुनवाए जाएं जाने से पहले। और जनाब, इसी तरह गीतों का सिलसिला चलता रहेगा हमारे शो के एंड तक। हमेशा हमारी कोशिश होती है जो गीत ज़्यादा सुनने वाले थे, जिन्होंने गीत मिस कर दिए हमारी बातों में, उनको ढेर सारे गीत सुनवाए जाएं। रुकी, आपका शुक्रिया कॉल का, जाते जाते आपने भी कॉल की, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आने वाला खूबसूरत सा गीत आपके लिए भी होगा।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जनाब, इस वक्त इन जुदाई की घड़ियों में टाइम की तरफ देखा तो पता लगा कि जनाब टाइम हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:42।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
9: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
8: चाचा केड़ा चाचा?
9: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
8: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
9: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
10: Sunrise Music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
0: जी जनाब, अब जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह वही बात करते हैं, हमेशा बड़ी आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करता हूँ आपसे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय मोहब्बतों के, चाहतों के, दुआओं के, लेकिन एक आपके भले की गारंटी दे के एक बात करता हूँ। गारंटी कोई नहीं देता है आजकल बातों में, आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए गारंटी दे के ये बात करता हूँ हमेशा, याद रखिएगा। और किसी बात की गारंटी नहीं, इस बात की गारंटी है कि कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी में, मैं भी कोशिश करता हूं कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, आए तो आए दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आए आपकी वजह से, दूसरों की जिंदगी में कोशिश कीजिएगा खुशियां आए आपकी वजह से, कोशिश कीजिएगा किसी की जिंदगी में रुकावटें, मुश्किलात, तकलीफें इसकी वजह आप ना बन जाएं, जाने या अनजाने में, क्योंकि बनाए हुए सब लोग रब के, दुनिया, कायनात, जहान, मखलूकात, इंसान अशरफुल मखलूकात। सब लोग बनाए हुए रब के, किसी भी जात पात, रंग, नस्ल, मजहब, किसी इलाके से, किसी फिरके से, किसी का भी ताल्लुक हो, ये आपका मसला नहीं है, ये उस बनाने वाले ने सबको बनाया है, इंसान बनाया है सबसे पहले। कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले सबकी इज्जत करें आप, पहले एक इंसान समझ के, फिर देखिएगा लोग आपकी भी इज्जत करेंगे सबसे पहले एक इंसान समझ के। और गारंटी इस चीज की मैं देता हूं हमेशा कि अगर आप लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने की वजह बनेंगे, वसीला बनेंगे, कोशिश करेंगे, कोई अजनबी, कोई अपना, कोई पराया, कोई गैर, कोई खून के रिश्ते में है या कोई नहीं है खून के रिश्ते में, इंसान है कोई, आप दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करके देखिएगा, वजह बनिएगा आसानियों की, फिर देखिएगा इस चीज की गारंटी है कि रब आपको, आपकी जिंदगी में, कि कैसे कैसे मौजज़े दिखाएगा आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के। आप दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करें, रब आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करेगा। आप प्यार बांट के देखें, रब आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार शामिल करेगा। आप इज्जत दे के देखें लोगों को, दूसरों को, रब आपको और आपकी जिंदगी में इज्जतों में इजाफा करेगा। जो बांटेंगे जितना ज्यादा, रब आपको वो उतना ज्यादा देगा। दूसरों की जिंदगी में कांटे तकलीफें अगर शामिल करेंगे, तकलीफें बांटेंगे, दुख बांटेंगे, दूसरों की जिंदगी में दर्द बांटेंगे, तो आपकी जिंदगी में दर्द आएगा, तकलीफें आएंगी। ये याद रखिएगा, ये रब का कानून है। जो बोएंगे वो काटेंगे, जो देंगे वो मिलेगा। रिज्क बांटेंगे, रिज्क में बरकत होगी। खुशियां बांटेंगे, खुशियों में बरकत होगी। तो इस चीज की गारंटी है, बस भला करेंगे तो भला होगा। नाचीज बंदा हूं, हकीर हूं, फकीर हूं, कुछ कहता हूं कुछ अजीब लगे, कुछ सही ना लगे, मेरी नादानी कम अकली, अनपढ़ होने का जी जनाब गुंजाइश दे दिया करें, रियायती नंबर दे के पास कर दिया करें। बाकी रब खैर करे आपकी जिंदगियों में, आपके अपनों की जिंदगियों में। मेरे और आपके लिए घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, बच्छोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची। जनाब अपनी यादों में, बातों में, चाहतों में, और सबसे बढ़के बिल्कुल सबसे बढ़के अपनी दुआओं में मुझे। जी जी बिल्कुल, इस बंदा नाचीज, इस खाक जैसे, खाक से बने खाकसार की बात हो रही है काशिफ की, तो मुझे काशिफ को जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत एक बार फिर से आपके साथ होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और मेरा, मेरा और आपका। अल्लाह निगेवान।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूं शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूं ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें। आमीन।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

मनपसंद आवाजों पे मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं, और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

बाहर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था, उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएंगे, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द-गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी हाँ जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफ़े हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाएँ। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरे और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सके आपके साथ साथ।

प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे, और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में हम आन पहुंचे हैं आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है जी आयानू वेलकम। पिछले दो घंटे साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस घंटे में भी आप ज़रूर हमारा साथ निभाएंगे और इस घंटे में भी जो गीत हम आपके लिए पेश करेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे और आखिर तक आप ही के लिए रहेंगे। सुनते रहिएगा और साथ साथ रहिएगा। आपके साथ का शुक्रिया।

0: This is a message from Mercedes-Benz Vans in association with Sunrise Radio. Here's a number that should make you sit up. Vehicle downtime costs UK businesses an average of £1,172 per van per day. That's why Mercedes-Benz Vans created the Uptime Promise. From roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more, they have a range of advantages designed to keep your business moving. Mercedes-Benz Vans has got your back. Search Mercedes-Benz Vans today and discover their Uptime Promise. Source Stay on the Road report. Attribution required. Based on research among 500 senior decision makers in UK businesses where vans are business critical. Learn more at mbvans.co.uk/uptimepromise.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरों ने जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

अहमद फराज कहते हैं कि किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, मैं दोस्त पुराना सही मगर जिंदा तो हूँ। और इसके जवाब में परी शाकर कहती हैं, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। चंद अशआर आपके गोशे गुजार किए, मुझे यकीन है कि आपने इंजॉय किए होंगे। और आप हमेशा शायरी पसंद करते हैं और शायरी बोलना भी पसंद करते हैं, और मुझे भी कभी कभी शौक आ जाता है कि आपको कुछ अशआर सुनाऊं। ऐसे ही चंद ये जो अशआर थे आपके लिए पेश किए, और अब आपके लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि यकीनन आप पसंद करेंगे और इंजॉय भी करेंगे।

आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, क्योंकि आप हमारे हम सफ़र थे और इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ साथ थे, इसीलिए ये 3 घंटे बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही हसीन रहे, क्योंकि आपका साथ और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ थी। इंशाल्लाह हमारा प्यार और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ साथ रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर इंशाल्लाह। आज की मुलाकात बस यहीं तक थी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह निगेबान। बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़, गुड बाय।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy-to-understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
1: चाचा केड़ा चाचा
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
1: मस्कीन लोहार आज कुछ याद है जी, तोता विद्या हो के माँ कोलू आवे कोल रानी सम्मी दे आके जवाब करदा, रानी सम्मी की आखदी, ओते तोता की आखदा, अला भाई फतेह मंदा लोहार दे शिगिरदा की आखदा।

0: advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
1: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
1: चाचा केड़ा चाचा
2: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

तुम भी हंस के ऐसे देखा।